सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे जून माह की बागवानी कार्य कैसे की जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राजेश कुमार।
1: कृषक मित्रों जोहार, खेती की बातें के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे जून माह में बागवानी कार्य इस विषय पर। अगर आप किसान हैं तो यह जानते ही होंगे कि खेतों में खरीफ फसलों की बुआई का समय आ चुका है। कुछ किसानों ने तो अपने खेतों में जून महीने यानी कि खरीफ सीजन की फसलों की बुआई का काम शुरू भी कर दिया है ताकि वह समय रहते अच्छा लाभ पा सके। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो जल्द ही करना शुरू करें। ऐसे में आज हम बागवानी किसानों के लिए जून माह की बेहतरी व अच्छा लाभ कमा कर देने वाली फसलों की जानकारी लेकर आए हैं। जून का महीना गर्मियों के अंत और मानसून की शुरुआत का समय होता है। इस दौरान मुख्य रूप से तेज धूप से पौधों को बचाने, क्यारियों की निराई, मानसून के लिए बीज बोने और क्यारियों में जैविक खाद डालने जैसे कार्य किए जाते हैं। जून में मानसून की शुरुआत के साथ आप भिंडी, लौकी, गिलकी, करेला, खीरा, बैंगन और हरी मिर्च लगा सकते हैं। इसके अलावा बेल वाली सब्जियों के लिए आप सीधे गमलों या क्यारियों में बीज बो सकते हैं। पपीता, नींबू और अमरूद जैसे फलों के पौधे लगाने के लिए यह उत्तम समय है। बढ़ते हुए पौधों और गर्मियों में फूलों वाले पौधों को नियमित रूप से तरल जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट दें ताकि उनकी वृद्धि अच्छी हो सके। इस समय मुरझाए हुए फूलों और सूखी पत्तियों को पौधों से हटाते रहें ताकि नए फूल अच्छे से खिल सके। जो पौधे बड़े हो गए हैं उन्हें सहारा देने के लिए लकड़ियां या मचान बनाएं। गमलों और क्यारियों से खरपतवार समय समय पर निकालते रहें। बारिश से पहले पौधों पर कीड़ों की जांच करें। संक्रमण से बचने के लिए नीम के तेल का छिड़काव आप कर सकते हैं। जून का महीना सब्जी के बगीचे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस महीने में आंवला की बागवानी के लिए किसानों को एक एक एक मीटर आकार के गड्ढे खोदकर तैयार कर लेनी चाहिए। फिर इसमें 15 दिनों के बाद 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस की धूल एवं ऊपरी मृदा के साथ अच्छे से मिलाकर डाल दें। अच्छा उत्पादन पाने के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई जरूर करें। जून माह में किसान अमरूद के बाग से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दरअसल गर्मी के सीजन में लोगों को अमरूद खाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए किसानों को जून माह में इसकी सिंचाई से लेकर अन्य कार्य पर ध्यान रखना चाहिए। अनार के बाग लगने के बाद सिंचाई जरूर करें और फिर सिंचाई के 45 दिनों के बाद पौधों की हल्की हल्की छटाई जरूर करनी चाहिए ताकि यह अच्छे से विकसित हो सकें। इसके पौधों पर जून आखिरी सप्ताह एवं इसके बाद भी रासायनिक जैवनाशियों का प्रति सप्ताह इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के पौधों की दूरी 6.8 मीटर तक रखें। देखा जाए तो इसमें फूल व फल लगने की 24 डिग्री सेल्सियस व 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मक्का की बुआई 25 जून तक पूरी कर लें। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बुआई 15 जून तक कर लेनी चाहिए। संकर मक्का की शक्तिमान 1 HQPM1 संकुल मक्का की तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता तथा जौनपुर सफेद व मेरठ पीली देशी प्रजातियां हैं। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा प्रारंभ होने पर ही करें। यदि आप फूलों की खेती करते हैं तो रजनीगंधा, देशी गुलाब एवं गेंदा में खरपतवार निकालें व आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। रजनीगंधा की फसल से प्रति स्पाइक फूलों की संख्या व स्पाइक की लंबाई बढ़ाने के लिए GA 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करें। बेला तथा लिली में आवश्यकतानुसार सिंचाई, निराई व गुड़ाई करते रहें। जायद में बोई गई सूरजमुखी व उर्द की कटाई मड़ाई का कार्य तथा मूंग की फलियों की तुड़ाई का कार्य 20 जून तक अवश्य कर लें। यदि मई के अंतिम सप्ताह में आपने धान की नर्सरी नहीं डाली हो तो जून के प्रथम पखवाड़े तक पूरा कर लें, जबकि सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना जून माह में किए जाने

वाले बागवानी कार्यों के बारे में। उम्मीद है आप इस महीने अपनी खेती पूरी लगन के साथ करेंगे। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। जोहार।

आज का चिंतन, साधारण जीवन में महानता खोजिए, क्योंकि महानता किसी दूर की वस्तु में नहीं होती, यह हमेशा हमारे पास रहती है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:16 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए शेर हिंद आगे बढ़ने से फिर भी तू नडर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम

0: कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। अब आइए सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं। प्रथम प्रस्तुति है हरिओम शरण की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रा

यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 7:20 पर लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और 7:35 पर श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का हमारा समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का समय होता है प्रादेशिक समाचार का, ये प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर श्रोता आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज के दिन आप सुनते हैं एक ही गीतकार के रचे गाने। 9:30 का हमारा समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत लेकर। सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी और दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे भावगीत। 12:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होता है। दोपहर 1:20 और 2:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अपराह्न के 3 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 3:30 पर आप आनंद ले सकते हैं सुगम संगीत का। 3:45 पर लोकगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा। 5:30 पर कार्यक्रम कल कारखाने की प्रस्तुति होगी। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर आप सुन सकते हैं झारखंड के लोकगीत और संध्या 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का और 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम आलोक। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं और यहीं से प्रसारित किया जाता है। रात्रि 9 बजे न्यूज एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से हम आपको सुनवाते हैं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत में गजलें।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे फनकार जगजीत सिंह की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब समय हो चला है लोकगीतों का। आइए सुनवाते हैं लोकगीतों का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुनेंगे भोजपुरी गीत शंकर प्रसाद शांति जैन से।

0: अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम।

शंकर प्रसाद शांति जैन के गाए इस भोजपुरी गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीतों का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान रूपांकर हिमिकारिंग को और जयश्री की आवाज़ों में।

हिमिका के गाए इस आधुनिक गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इस समय सुबह के 7:50 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे कृमि की समस्या प्रभावित स्वास्थ्य। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आज नेशनल डी वर्मिंग डे है, इसलिए स्वास्थ्य चर्चा में आज बातें कृमि की समस्या पर। कृमि की समस्या के क्या कारण है, किस तरह के लक्षण इसमें दिखते हैं और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस

0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृमि की समस्या जो होती है, इसका होने का मुख्य कारण क्या होता है?
1: पेट में कृमि का होना एक सामान्य बात है, यह बच्चों से बूढ़ों तक के आंतों में पाए जाते हैं
0: जी।
1: इससे प्रतिवर्ष विश्व में हजारों लोग प्रभावित होते हैं। कृमि वह कीटाणु है जो विभिन्न माध्यम के साथ शरीर में प्रवेश करता है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषित भोजन पानी के कारण, अनहाइजीनिक वातावरण, पुअर सैनिटेशन
0: जी।
1: कुछ लोग शारीरिक स्वच्छता के प्रति बहुत उदासीन होते हैं।
0: अच्छा।
1: उन लोगों को ज्यादा चांस रहता है। घर में कीड़ों और चूहों के द्वारा खाना पीना को संक्रमित कर दिया जाता है
0: जी, जी।
1: वही खाना व्यक्ति खाते हैं।
0: अच्छा।
1: जिसके कारण यह संक्रमण शरीर में फैलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, खेल के मैदान में जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं
0: जी।
1: और उन्हीं उंगलियों को वो नाक में या मुंह में डालते हैं, जिसके कारण उसका कृमि जो है, उसका अंडा जो है, श्वसन के माध्यम से या मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। और बुजुर्गों में, अधिकांशतः बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है
0: जी, जी।
1: जिनके कारण भी उनको कृमि का संक्रमण हो सकता है।
0: तो किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं, लोगों को कैसे पता चले कि किसी बच्चे के पेट में कृमि है या फिर किसी बड़े आदमी के पेट में भी कृमि है?
1: जी जी, कृमि शरीर के किसी भाग में पहुंचकर वो टिश्यू से चिपक जाता है, और टिश्यू से चिपकने के उपरांत जितने भी पोषक तत्व होते हैं शरीर के
0: जी,
1: इधर विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन, सभी को चूस लेता है, और जिसका नतीजा यह होता है कि आदमी कमजोर, यहाँ एनीमिया और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसके लक्षण शुरू में नहीं दिखाई देते हैं।
0: अच्छा।
1: एकाएक दिखना चालू होता है। कभी कभी तो संक्रमण के 15-20 वर्षों बाद लक्षण दिखते हैं। मल में कभी कभी दिखते रहता है
0: जी। मैं अगर आदमी ध्यान दे तो
1: मल में दिखाई देता है
0: जी।
1: आंत में संक्रमण के कारण पेट दर्द होता है, कमजोरी होती है, डायरिया होता है, भूख नहीं लगने की शिकायत होती है, पेट फूल जाता है, उल्टी आदि समस्याएं होती रहती हैं। मल द्वार या योनि के पास अत्यधिक खुजलाहट, नींद न आने की शिकायत, बिस्तर पर पेशाब हो जाना, अचानक एलर्जिक रैसेस शरीर में हो जाते हैं, ये सभी कृमि होने के कारण होते हैं। कृमि एक छोटी समस्या तो है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत घातक कभी कभी होता है। जब एक कृमि शरीर में प्रवेश करता है तो लिवर, लंग्स, यहाँ तक कि ब्रेन में चले जाता है
0: जी।
1: कभी कभी यह ब्रेन में एपिलेप्सी का कारण भी हो जाता है।
0: अच्छा।
1: लंग्स में टीबी का कारण हो जाता है, इसलिए इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करते।
0: तो हम ये कह सकते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम जो है
1: जी जी,
0: वो खतरनाक हो सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये फैटल हो सकता है।
0: तो इससे बचने के क्या उपाय आप?
1: इसके बचने से उपाय है कि मान लीजिए जो व्यक्ति संक्रमित हो गए हैं, उनके जितने भी वस्त्र हैं, अंतः वस्त्र हैं, उनका प्रॉपर गर्म पानी से सफाई, गर्म पानी से धोया जाए उसको। खाना पीना उनको कच्चा एकदम बिल्कुल नहीं देना है, अच्छी तरह से साफ सफाई का व्यवस्था करना है, शारीरिक स्वच्छता पर एकदम ज्यादा ध्यान देना है।
0: अच्छा।
1: प्लस हमेशा कभी भी ओपन शौचालय का व्यवहार, मतलब खेत में शौचालय नहीं जाना है
0: जी।
1: हमेशा शौचालय का व्यवहार करना है। अच्छा। ये स्वच्छ भारत मिशन में भी आपको सहयोग
0: जी,
1: करना
0: जी, बिल्कुल सही एकदम।
1: और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कृमि को रोकथाम के लिए जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका भरपूर लाभ उठाना है, उसमें सहयोग करना है।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि कृमि आमतौर पर लोग समझते हैं एक मामूली समस्या है, लेकिन अगर हम उसको नज़रअंदाज करें तो ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये हमारे ब्रेन पे असर कर सकता है, एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो कृमि के कारण हो सकती है। इसे बचने के लिए जो भी उपाय डॉक्टर अनिल ने बताया, उनकी बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के बच्चे और बड़े भी अगर कृमि की समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें इस समस्या से निजात पाने में कुछ हद तक सफलता हासिल होगी। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कृमि की समस्या प्रभावित स्वास्थ्य विषय पर जानकारी डॉक्टर अनिल कुमार से। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सुनो ना,
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है, हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
7: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
6: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
7: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स

0: जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार ₹5,00,000 तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5,00,000 रुपए मिलेगी।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
4: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 25,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25,00,000 और घायलों को 10,00,000 रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर ये प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला कैदी यौन शोषण मामले में लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से तलब की पीड़िता की मेडिकल और जुडिशियल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। मौसम केंद्र रांची ने आज राजधानी रांची, बोकारो, खूंटी और कोल्हान क्षेत्र में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की जताई आशंका। जारी किया येलो अलर्ट। और कल से शुरू हो रही झारखंड T20 लीग की तैयारी पूरी। छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने लॉन्च की अपनी टीम और चमचमाती ट्रॉफी। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित करने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महीने की 9

0: तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। वे 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इधर झारखंड के सभी जिला अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिल रहा है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीजीपी और आईजी जेल के शपथ पत्र पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार से पीड़िता की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और जुडिशियल कमिश्नर से जांच रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। झारखंड में दोनों राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है।
1: जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम सदस्यों की उपस्थिति रही, एकजुट रहा गठबंधन, ये तमाम चीजें बहुत हद तक स्पष्ट करती हैं। और अगर आप तीसरे प्रत्याशी के नॉमिनेशन को देखें तो आपको दिखेगा कि उसमें माननीय विधायकों की उपस्थिति कितनी कम थी। गठबंधन के वोटर्स साथ में थे, ये एक मजबूती को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने आश्वस्त हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।
0: इधर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि वे झारखंड के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे।
2: पार्टी ने जो सोचा है, ऐसे व्यक्तित्व को लाए हैं जो राज्य के विकास में कुछ सहयोगी बनेंगे। सारा एनडीए एकजुट होकर हम लोग मतदान करेंगे। अच्छे कैंडिडेट हैं, 2 बार यहाँ राज्यसभा के सदस्य रह गए, 3री बार आ रहे हैं। झारखंड की धरती को अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छा कुछ करने का उनका मन में विचार है, तो शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया निश्चित तौर पर अच्छा निर्णय है।
0: आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर आदिवासियों से धोखेबाजी और माफिया राज चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। सरकार के खिलाफ आजसू 22 जून को धनबाद में स्थापना दिवस से बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।
3: धनबाद में पुलिसिया कार्रवाई जिस रूप से माफिया राज और जो तंत्र फेल है वहाँ पर, इसी संदर्भ में केंद्र बनाते हुए जागरूक जनता का अपील के ऊपर पार्टी के बलिदान दिवस को हम लोग धनबाद में मनाने का निर्णय लिए हैं। 22 जून को पार्टी मार्च करेगी, वहाँ पर सरकार के और सरकार के निगरानी में हो रहे लूट खरोच के विरोध में एक चेतावनी के रूप में हम धनबाद कूच करेंगे।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़गाई जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कोर्ट द्वारा सीएम की डिस्चार्ज याचिका खारिज होना स्वागत योग्य है। श्री मरांडी ने साफ किया कि जमानत मिलना दोष मुक्ति का प्रमाण नहीं है। श्री सोरेन को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज राज्य भर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कुछ देर बाद रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल और बिरसा चौक पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य नेता उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे।
4: आज झारखंड समेत पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। आज के दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि भगवान बिरसा की जन्म स्थली खूटी के उलिहातू समेत राज्य के तमाम आदिवासी बहुल इलाकों में विशेष ग्राम सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति, हर युवा एक ही संकल्प दोहरा रहा है, जल जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प, जो भगवान बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा सपना था। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में बेड की किल्लत जल्द दूर होगी। नेत्र विभाग के 2 वार्ड स्थायी रूप से मिलने से अगले 3 महीनों में 70 नए बेड जुड़ेंगे। इससे मरीजों को फर्श पर इलाज कराने से मुक्ति मिलेगी। साथ ही 1.5 करोड़ के नए उपकरण और वेंटिलेटर भी लगाए जा रहे हैं। राजधानी रांची के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने 1 जून से 8 जून तक विशेष वाहन जांच अभियान चलाया है, जिसके तहत रिकॉर्ड 3,775 चालान काटे गए हैं। और अब मौसम का हाल। मॉनसून से पहले राजधानी को जलजमाव से मुक्त कराने के लिए रांची नगर निगम ने छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर है। नालों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन मैपिंग और जियो टैगिंग की मदद ली जा रही है। राज्य में गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। मौसम केंद्र ने आज रांची, बोकारो, खूंटी और कोल्हान सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल से शुरू हो रहे झारखंड T20 लीग को लेकर रांची में जर्सी लॉन्च और मैनेजमेंट घोषणाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने भव्य कार्यक्रमों में अपनी टीमें, जर्सी और ट्रॉफियां लॉन्च की। दोनों टीमों ने खिताब जीतने और राज्य की युवा प्रतिभाओं को निखारने का दावा किया है।
5: हमने अपना टीम का नाम कोई एक शहर पे नहीं रख के छोटा नागपुर नाम दिया, जिससे छोटा नागपुर से जुड़े जितने भी जिले हैं उनको ये टीम अपनी टीम की तरह लगे और वो इस दौड़ में अछूते ना रह जाए। फिर टीम बनाने की जब बात आई तो हमने एक बैलेंस टीम बनाया, हमने बड़े नाम भी लिए और नया टैलेंट भी लिया, जो जूनियर प्लेयर्स है जिनको अभी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड में राज्यसभा की दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव महागठबंधन में सेंध लगाने उतरे नाथवाणी। प्रभात खबर ने लिखा है, कल बालू घाटों पर लग जाएगी रोक, 444 में से केवल 14 घाट ही हो पाए चालू, पूरे मॉनसून फिर झेलनी होगी बालू की किल्लत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों को काट डाला। दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज याचिका खारिज, चलेगा मुकदमा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला कैदी यौन शोषण मामले में लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से तलब की पीड़िता की मेडिकल और जुडिशियल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। मौसम केंद्र रांची ने आज राजधानी रांची, बोकारो, खूंटी और कोल्हान क्षेत्र में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की जताई आशंका, जारी किया येलो अलर्ट। और कल से शुरू हो रही झारखंड T20 लीग की तैयारी पूरी, छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने लॉन्च की अपनी टीम और चमचमाती ट्रॉफी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मैं आपकी रेडियो सखी मोनिता पुनः स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

अपनी ट्यून क्या है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने सुना फिल्म चंबल की कसम का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था खयाम ने।

0: एक मुसाफिर एक हसीना, आपने सुना इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। राजा मेहंदी अली खान के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी जमशेदपुर से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपीश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने बताया कि अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं सुरंजना लेकर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान,
2: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी

0: یعنی نمیشا کے ساتھ प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कैफे साहब का सिनेमाई सफ़र भी लाजवाब रहा। कागज़ के फूल, हीरे रांझा और अर्थ जैसी फिल्मों में उनके लिखे गीतों ने इतिहास रच दिया, लेकिन उनकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू था महिलाओं के प्रति उनका सम्मान। उनकी मशहूर नज्म औरत आज भी आधी आबादी को सर उठाकर चलने की प्रेरणा देती है, जिसमें वे कहते हैं, उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे।

साहित्य अकादमी और पद्मश्री से सम्मानित कैफी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शायरी हमेशा हमें रास्ता दिखाती रहेगी। चलिए सुनते हैं उन्हीं का लिखा यह सदाबहार गीत।

0: अंधेरे का इशारा समझू, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो भी
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

आज के कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं अर्थ, तमन्ना और हीरे रांझा। आवाज़ें जगजीत सिंह, सोनू निगम, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। संगीत निर्देशन था जगजीत सिंह, अन्नू मलिक और मदन मोहन का। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना कैफी आज़मी की रचनाएँ।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं शास्त्रीय संगीत लेकर।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001-4242।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग अलहया विलावल पर आधारित सरोद वादन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से।

राग अलाया बिलावल पर आधारित सरोद वादन आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से। और इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम

0: जीएम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, "With the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare." The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong and self-reliant India. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that dedication and service spirit have been the government's invaluable capital for nation building. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System (LPMS) today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Union Home Minister paid tributes to Lord Birsa Munda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said, "Lord Birsa Munda sounded the conch of freedom against British rule through

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और दांबुला में 3 देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि

0: मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अधिक ब्यौरे के साथ है हमारे संवाददाता।
2: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी और हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इजराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के बाद अपने हमले रोक दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेड्रोस अधनोम घेब्रेसस युगांडा के दौरे पर हैं। वे कांगो में जारी इबोला प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने युगांडा में संयुक्त राष्ट्र टीम के साथ बैठक कर समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से भी मुलाकात की। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मेक्सिको की खाड़ी में सोमवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका में फ्लोरिडा के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलीपींस के दक्षिण मिंडानाओ द्वीप के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मिंडानाओ में आए भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत का फिलीपींस के लोगों और सरकार के साथ पूरा समय।

0: समर्थन है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इस बीच आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है। इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और जतिन सप्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन आज से सिडनी में खेला जा रहा है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई कर रही हैं। महिला सिंगल्स में युवा मालविका बंसोड़, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हेमनाथ भारत की चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय और किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण भी आज से तुर्की के आंताल्या में शुरू होने जा रहा है। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर नजर रहेंगी जो 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और खेल जगत से एक और खबर कि भारत ने उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार अंत किया। भारत ने फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में कुल मिलाकर 17 पदक जीते और टीम तालिका में शीर्ष 3 में शामिल रहा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग के बाद सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में श्रोताओं हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर,
6: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर, गीतों भरे इस खूबसूरत सफर में स्वागत है आपका।

लव स्टोरी आपने सुना है इस फिल्म का गाना। आवाज़ें थी अमित कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

कबीर सिंह, आपने सुना इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को रचा था इरशाद कामिल ने, संगीत निर्देशन था अमाल मलिक का।

अरमान मलिक का गाया ये गीत आपने सुना दो लफ्ज़ों की कहानी फिल्म में। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को रचा था, संगीत अमाल मलिक का था। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना गदर टू फिल्म से। विशाल मिश्रा की ये आवाज़ है, सईद कादरी की रचना है, संगीत मिथुन का है।

आप सुन रहे थे गदर 2 फिल्म का ये गाना, विशाल मिश्रा, नीति मोहन, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की आवाज़ों में सईद कादरी की रचना थी, धुन मिथुन का था। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, खट्टा मीठा फिल्म से, आवाज़ें रूप कुमार राठौर और हर्षदीप कौर की हैं, बोल इरशाद कामिल के हैं, धुन प्रीतम का है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Food. कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मिट्टी की खुशबू में बसी मेरी भारत माँ की शान, इसके लिए हंस कर दे दें हम अपना तन और प्राण। हिमालय जिसका मुकुट सुहाना, गंगा जिसकी धार, सत्य अहिंसा और प्रेम का ये अनुपम भंडार। हरे भरे खेतों की रौनक, वीरों की पहचान, हर कोने में गूंज रही है भारत की मुस्कान। जब भी देश पुकारे हमको आगे बढ़ते जाएं, मेहनत साहस और सेवा से इसका मान बढ़ाएं। धर्म अनेक भाषा अनेक, फिर भी एक विचार, भारत माँ के चरणों में है हम सब का संसार। तिरंगा ऊंचा लहराता रहे यही हमारी आस, देश प्रेम की ज्योति जलाकर करे राष्ट्र का विकास।

आप सुन रहे थे योद्धा फिल्म का गाना। बी प्राग और साथियों की आवाज़ों में गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीत से सजाया था तनिष्क बागची ने। श्रोताओं, जब आज का झारखंड घने जंगलों और पहाड़ों से भरा था, तब एक छोटे से गांव उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को एक बालक जन्मा। नाम था बिरसा मुंडा। उनका परिवार बहुत गरीब था। वे रोजी रोटी की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे। बचपन में बिरसा मुंडा अपने दोस्तों के साथ जंगलों में खेलते, बांसुरी बजाते और प्रकृति के बीच समय बिताते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार और जमींदार आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। युवा बिरसा मुंडा पढ़ने में तेज थे। कुछ समय उन्होंने मिशन स्कूल में भी शिक्षा ली, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी अपनी संस्कृति और परंपराएं खतरे में हैं। तब उन्होंने अपने लोगों को अपनी पहचान, धर्म और अधिकारों के लिए जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे हजारों आदिवासी उनके साथ जुड़ने लगे। लोग उन्हें प्रेम से धरती आबा यानी धरती के पिता कहने लगे। बिरसा मुंडा ने संदेश दिया, अपनी भूमि, अपने जंगल और अपनी संस्कृति की रक्षा करो। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। सन 1899 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे उलगुलान यानी महाविद्रोह कहा जाता है। आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों को चुनौती दी। अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल भेजकर बंद कर दिया गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में आज के दिन यानी 9 जून सन 1900 को जेल में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। आज भी झारखंड और पूरे भारत में बिरसा मुंडा को आदिवासी स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। जो अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए निडर होकर खड़े होते हैं, उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को हम नमन करते हैं।

बी प्राग की आवाज़ में केसरी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया था आर को ने।

श्रोताओं, भय मुखरता से भरी दुनिया में हम अक्सर खुद से बातें करना भूल जाते हैं, है ना? जबकि इसका महत्व किसी अच्छे दोस्त से बातें करने की तुलना में कम नहीं है। जब भी मन शांत हो, तब खुद से पूछें कि जीवन में आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं और उस दिशा में स्वयं को किस सीमा तक ले जा सकते हैं। मस्तिष्क से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। अंतर मन की आवाज की प्रतीक्षा करें। जो उत्तर भीतर से आए, उस पर संदेह न करें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जिसे आपको वास्तविक प्रेम है, तो आप देर सवेर दिशाहीन हो जाएंगे। इसलिए आज से सकारात्मक संकल्प ले कि भागम भाग भरी जीवन में कुछ समय खुद से बातें करेंगे।

0: ये था एक रिश्ता फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज़ और सारिका की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीत बज गया था, संगीतकार जुड़ी नदिम शवर ने।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी,

0: नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं कार्यक्रम में, उन श्रोताओं का भी हम स्वागत करते हैं। दिन के 11:29 हो रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं कुछ फिल्मी जगत की बातें। श्रोताओं आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई को। वे विशेष रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने शास्त्रीय संगीत आधारित मधुर संगीत के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 9 जून 1912 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सोनवाड़ी गांव में हुआ था। उनका करियर प्रभात फिल्म कंपनी से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अभिनय, गायन और संगीत रचना का काम किया। बाद में वे फिल्म निर्देशक वी शांताराम के प्रमुख संगीतकार बने और कई यादगार फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। उनके कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में झनक झनक पायल बाजी, दो आंखें बारह हाथ, गूंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण, आशीर्वाद और गुड्डी शामिल हैं। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में ए मालिक तेरे बंदे हम और बोले रे पपीहा शामिल है। उन्होंने महान गायिका वाणी जयराम को भी फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। 22 दिसंबर 1975 को मुंबई में एक लिफ्ट दुर्घटना में उनका निधन हो गया। भारतीय फिल्म संगीत में शास्त्रीयता और मधुरता को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकारों में वसंत देसाई का नाम आज भी बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए सुनते हैं उन्हीं के संगीत निर्देशन में झनक झनक पायल बाजी फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू शायर असदुल्ला खान यानी असद भोपाली को। उनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में हुआ। उनका फिल्मी सफर 1949 में शुरू हुआ, जब एक मुशायरे में उनकी शायरी से प्रभावित होकर फिल्म निर्माता उन्हें मुंबई ले गए। इसके बाद उन्होंने लगभग 400 गीत लिखे और 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें दिल दीवाना बिन सजना के मारे ना इस गीत के लिए 1990 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। दुर्भाग्य से गंभीर बीमारी के कारण वे पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। 9 जून 1990 को उनका निधन हुआ। उर्दू शायरी में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी शायरी का संग्रह रोशनी, धूप और चांदनी उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ।

गीतकार असद भोपाली का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था पारसमणि, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

श्रोताओं, आज हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक राज खोसला की पुण्यतिथि। उनका जन्म 31 मई 1925 को पंजाब में हुआ। वे 1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों में निर्देशन, निर्माण और पटकथा लेखन के लिए जाने जाते थे। उनकी खास पहचान रह

थ्रिलर और भावनात्मक पारिवारिक फिल्मों के लिए थी। उन्हें अक्सर वुमेन्स डायरेक्टर भी कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्मों में महिला पात्रों को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में CID, काला पानी, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, मैं तुलसी तेरे आंगन की और दोस्ताना शामिल हैं। राज खोसला ने अपने करियर की शुरुआत प्रसिद्ध निर्देशक गुरुदत्त के सहायक के रूप में की थी। बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और हिंदी सिनेमा में सस्पेंस और न्यू शैली को लोकप्रिय बनाने में गिने गए। उनकी फिल्मों के गीत भी बहुत ही लोकप्रिय रहे। आइए सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये गाना।

और अब श्रोताओं कुछ काम की खबरें। आधार कार्ड संबंधी शिकायत या पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1947 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस नंबर पर आधार कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, टोल फ्री नंबर है 1947। झारखंड में ITI पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र वेबसाइट पर जाकर 25 जून तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 29 जून को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। संस्थानों में आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 9 और 13 जून को चांडिल के बाद गुंडाविहार और मूरी होकर बदले मार्ग से चलेगी, जबकि टाटानगर असनसोल की एक मेमू ट्रेन 11 जून और दूसरी मेमू ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। आद्रा में लाइन ब्लॉक से ये आदेश हुआ है। और चलते चलते मौसम की जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दिया जाए। मौसम के बारे में पूर्वानुमान है, कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों में दिन में धूप होगी और शाम को बारिश हो सकती है। आज के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है ताल, आवाजी हैं सोनू निगम, AR रहमान और साथियों की गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार AR रहमान।

तम या रहमान अरोड़ा था। श्री राम और सुजाता की आवाज़ सुनी। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार ए आर रहमान। और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाज़त।

आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी इसी सभा में दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। दिन के 12 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं,

श्रोताओं, जिंदगी का हर लम्हा सेलिब्रेट करना चाहिए। ईश्वर की रची इतनी खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए जब आपका जन्म हुआ है, तो क्यों ना उसे जिंदा दिली से जिया जाए, उसका हर लम्हा सेलिब्रेट किया जाए। आप अपने होने को दिल से स्वीकार करें, जिंदगी के मजे लूटिए, आनंद मनाइए, खुशी मनाइए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाशिए और जिंदगी के हर लम्हे को सेलिब्रेट कीजिए।

मैंने उस शख्स को कभी हासिल ही नहीं किया, मैंने उस शख्स को कभी हासिल ही नहीं किया, फिर भी हर लम्हा लगता है जैसे मैंने उसे

गुजर गया है कोई लम्हा ए शहर की तरह, गुजर गया है कोई लम्हा ए शहर की तरह, अभी तो मैं उसे पहचान भी न पाया था।

जिंदगी है लम्हों की पोटली, हर लम्हा समेटे है एक दास्तान। कोई लम्हा मौत की माफिक है, कोई लम्हा दे जाता नई जान। कोई लम्हा नज़र झुका के बैठा, कोई लम्हा उभरा बन की शान। कोई लम्हा महफिल का हिस्सा, कोई लम्हा एकदम वीरान। जिंदगी है लम्हों की पोटली, हर लम्हा समेटे है एक दास्तान।

श्रोताओं, जिंदगी छोटे छोटे लम्हों को जोड़कर बनी है। बीते लम्हे लौटकर कभी नहीं आते और हर लम्हा अपने आप में बेहद खास होता है। लम्हा शीर्षक गाने आज हम आपको सुनवा रहे थे। जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी कृष्णा कॉटेज, गैंगस्टर, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और पीकू। इन गीतों के लिए आवाजें थी श्रेया घोषाल, अभिजीत, अरिजीत सिंह और अनुपम राय के। गीतकार थे नीलेश मिश्रा, मनोज मुंतशिर और अनुपम रॉय। संगीत से सजाया था अनु मलिक, प्रीतम, अमाल मलिक और अनुपम रॉय ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारी इसी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं दिन के 1:20 पर।

स्थानीय कलाकार होंगी अबिदा परवीन। तीन बजकर 3:45 पर लोकगीत के कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत कलाकार होंगे शंभुराम। और शाम 4:02 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा शाम के 5 बजे तक। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद राशिद खान का ख्याल गायन, राग है भीम पलासी।

आप सुन रहे थे राग भीम पलासी में उस्ताद राशिद खान का ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपनी रांची केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज जमशेदपुर दौरा। बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में किया जाएगा विकसित। लैंड सर्वे पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त। भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। झारखंड समेत पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। उन्होंने जनजातीय समाज को संगठित कर अपनी सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की रक्षा का पाठ पढ़ाया। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन से ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। अमित शाह ने उन्हें आदिवासी गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन और धर्मांतरण के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा प्रेरित करता रहेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।
2: एक अवसर हमें मिला था क्योंकि झारखंड दागदार रहा है, कलंक हमारे पे रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं इस प्रकार के चीजें देखने को मिलती है और इस अवसर को पुनः उन्होंने नाथवानी के माध्यम से वो दागदार बनाने का फिर प्रयास किया है। ये दुखद स्थिति है, इससे ज्यादा शर्मनाक बातें नहीं होती। राजनीतिक संस्कार की बातें, उन्होंने उस मर्यादा को उल्लंघन किया है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1 लाख प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य सरकार ग्रामीण चिकित्सा को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करेगी। एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा के अनुसार पहले चरण में 20 केंद्रों को मॉडल यूनिट बनाकर वहां दवाओं, डॉक्टरों और उपकरणों की उपलब्धता को 80% तक बढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि सभी जिलों में लैंड सर्वे कब तक पूरा होगा। अदालत ने 2025 में आधुनिक तकनीक से 6 महीने में काम पूरा करने के निर्देश के बावजूद प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के मसनोडी के प्राकृतिक आम अपनी खास मिठास के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां बिना किसी केमिकल के पेड़ पर पके शुद्ध आमों की भारी डिमांड है। इन स्वादिष्ट आमों को खरीदने के लिए रांची, पटना और दिल्ली सहित 7 समंदर पार अमेरिका तक से ऑर्डर मिल रहे हैं।
4: यहाँ खासियत इसका स्वाद है। मालदा हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का मालदा का टेस्ट कुछ अलग है, जिसके चलते इस सब जगह फेमस है। पटना, दिल्ली, रांची, बम्बई सब तो है, लेकिन पिछले साल 3 पेटी आम अमेरिका भी गया। शुरू में 5 साल तक सेवा बहुत है, उसके बाद समय पर बीच में पानी दे दिए कभी, और दवा छिड़कते हैं जब आम का मंजर उंजर निकलने का समय होता है ना। इस बार आम थोड़ा कम है, अगले साल उम्मीद है ज्यादा होगी।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 144 अंक बढ़कर 73,668 पर, जबकि निफ्टी 60 अंक बढ़कर 23,183 पर कारोबार कर रहा था। जापान अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर झारखंड की 6 खिलाड़ी आज रांची लौटी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक मांदर की थाप के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने हेतु प्रेरित करेगा।
5: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जापान गए, वहाँ खेले, अपना अच्छा से प्रदर्शन किए। जितने स्टाफ मैन थे सारे लोग का हम पर सपोर्ट था। हम वहाँ पे अच्छे खेले, बट हमारा तो लक्ष्य था गोल्ड लेकर आना, बट सेमीफाइनल में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से हमने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में चतरा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। देश भर के 900 खिलाड़ियों के बीच चतरा के रेहान अख्तर, मोहम्मद तबीश ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, वहीं मोहम्मद रहमतुल्ला और मोहम्मद शादाब ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज जमशेदपुर दौरा। बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में किया जाएगा विकसित। लैंड सर्वे पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, भूमि सर्वेक्षण में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 6 बेटियों का रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रोता इस समय आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 1:20 हो चुके हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रूपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।

0: Akashwadi at 90.
1: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज बातें अभिनेत्री अमीषा पटेल की। आज है उनका जन्मदिन। अमीषा बचपन से ही बहुत अलग थी, सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि डांस और एक्टिंग में भी बहुत अच्छी थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उनके सपनों में चमकदार दुनिया बसने लगी थी, फिल्मों की दुनिया। कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन उन्हें फिल्मों का ऑफर मिला। ये फिल्म थी

किस्मत ऐसी थी कि ये फिल्म कहो ना प्यार है सुपरहिट हो गई और अमीषा पटेल रातों रात स्टार बन गई। लोग उन्हें सोनिया के नाम से पहचानने लगे क्योंकि कहो ना प्यार है फिल्म में अमीषा पटेल का नाम सोनिया था। इसके बाद उन्होंने गदर एक प्रेम कथा में सकीना का किरदार निभाया। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि अमीषा का नाम हर घर में गूंजने लगा।

लेकिन श्रोताओं, हर कहानी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। कुछ समय बाद अमीषा पटेल की कई फिल्में वैसी सफलता नहीं पा सकी जैसी उम्मीद थी। फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरे आने लगे और मुकाबला और भी कठिन हो गया। धीरे धीरे उनकी चमक कम होने लगी, लेकिन उनका हुनर कभी खत्म नहीं हुआ। फिर भी अमीषा पटेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने समय समय पर वापसी की कोशिश की और अपनी मौजूदगी बनाए रखी।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर,
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री अमीषा पटेल अभिनीत फिल्मों के गाने।

श्रोताओं, कई साल बाद अमीषा पटेल फिर फिल्म गदर 2 में नजर आई और लोगों को याद दिलाया कि असली कलाकार कभी खत्म नहीं होते। आज भी अमीषा पटेल की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने सपने देखे, ऊंचाइयां छुई, गिरावट देखी है, लेकिन हमेशा खुद को संभाल कर आगे बढ़ती रही। श्रोताओं, सफलता आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान मेहनत और आत्मविश्वास नहीं छोड़ता, उसकी पहचान हमेशा बनी रहती है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे अभिनेत्री अमीषा पटेल अभिनीत फिल्मों के गाने। जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी कहो ना प्यार है, गदर एक प्रेम कथा, हमराज, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे और गदर टू। आवाजें थी उदित नारायण, अलका याग्निक, अभिजीत, आदित्य नारायण और मिथुन की। गीतकार थे इब्राहिम अर्श, आनंद बख्शी, सुधाकर शर्मा, जालेस राशिद और समीर। संगीत से सजाया था राजेश रोशन, उत्तम सिंह, हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। श्रोता, हमारी इस सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं 2:30 पर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
4: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज बातें अभिनेत्री सोनम कपूर की। आज है उनका जन्मदिन। बचपन से ही सोनम का सपना फिल्मों की दुनिया में जाने का था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले उन्होंने फिल्मी दुनिया को करीब से समझने के लिए निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ ब्लैक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। ये उनके जीवन का पहला कदम था। कुछ साल बाद 2007 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म सावनिया से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। ये फिल्म बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन सोनम कपूर ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने सीखना और खुद को बेहतर बनाना जारी रखा।

फिर आया साल 2010, जब आई हिट लव स्टोरी जैसे फिल्म ने सोनम कपूर को पहचान दिलाई। इसके बाद फिल्म रांझना ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म ने उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और लोग उन्हें गंभीर अभिनेत्री के रूप में देखने लगे। श्रोताओं, पहले सुनिए आई हिट लव स्टोरी फिल्म का गाना, फिर हम आपको सुनवाएंगे रांझना फिल्म का गाना।

श्रोताओं, सोनम कपूर की सबसे यादगार फिल्म नीरजा रही, जिसमें उन्होंने एयर होस्टेस नीरजा भनोट की सच्ची कहानी निभाई। इस फिल्म ने उन्हें कई बड़े पुरस्कार दिलाए और ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्टार के नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। लीजिए सुनिए नीरजा फिल्म का ये गाना।

इसके अलावा सोनम कपूर ने प्रेम रतन धन पायो, वीर द वेडिंग, भाग मिल्खा भाग और संजू जैसी फिल्मों में भी काम किया, जो बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे अभिनेत्री सोनम कपूर अभिनीत फिल्मों के गाने। आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी सांवरिया, आई हिट लव स्टोरी, रांझना और नीरजा। इन गीतों के लिए आवाजें थी शैल हादा, शफकत अमानत अली, सुनिधि चौहान, जावेद अली, कीर्ति संगाथिया और कविता सेठ की। गीतकार थे समीर, विशाल ददलानी, इरशाद कामिल, प्रसून जोशी। संगीत से सजाया था मोंटी शर्मा, विशाल शेखर, एआर रहमान और विशाल खुराना ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

श्रोता हमारे इसी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं शाम के 4:30 पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:55 हुआ चाहते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है।
1: लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
0: कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगे। वे शाम 5:30 बजे बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रबंधन कर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा के निर्देश अनुसार पहले चरण में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाया जाएगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड थाना अंतर्गत तेतुल बांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
2: 3 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों जो है धरवाडी थाना कर्माटा जामदारा के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा मोडस ये था कि गूगल में फर्जी आईडी बना के, कस्टमर केयर आईडी बना के जो है ये एबीके फाइल डाउनलोड कराता था और उनसे जो है ठगी की कार्रवाई ये लोग कर रहे थे। इनके पास से जो है कुल 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुआ है।
0: झारखंड की युवा पहलवान प्रियंका महतो ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की प्रशिक्षु प्रियंका के इस प्रदर्शन पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ, खेल विभाग और JSSPS ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है। क्रिकेट। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 को लेकर आज शाम 5 बजे रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में लीग के आयोजन, तैयारियों, टीमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। दिन के ठीक 3 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
1: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
2: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है, जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
2: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
2: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोविंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
4: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
5: आ गए भैया।
4: हाँ।
5: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
4: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाँ।
4: हर गोविंद भाई, हाँ? तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है। अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
5: अरे,
4: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
5: जीते रहो बेटा,
4: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
4: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
4: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
4: राम राम।

हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?

कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it,

श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के ठीक 3:30 में है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम

आप सुन रहे थे सूफी गाने, कलाकार थी अबीदा परवीन। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 3:45 में है। लोकगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।

कार्यक्रम लोकगीत के साथ मैं राजेश नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शंभुराम व साथी।

लोकगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हमारी इस सभा में शाम 4:02 पर आप सुनेंगे वाय ध्वनि अंकन पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। FM 92.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। अभी आइए आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्मटांड थाना अंतर्गत तेतुलबांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना परिसर में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने आमजनों की समस्याएं सुनी और निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। झारखंड की युवा पहलवान प्रियंका महतो ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम किया है। और श्रीलंका के दाम्बुला में चल रहे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:02 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शहर के विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आज बातें होंगी शहर भर की गतिविधियों के बारे में। सप्ताह भर में क्या क्या कुछ गतिविधियां हुई, इन सभी विषयों पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले बातें होंगी विश्व पर्यावरण दिवस की।
1: श्रोताओं, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ड्रॉइंग एंड ऐसे कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया और यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी श्री जितेंद्र प्रसाद जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने भी यहाँ पर आकर के कार्यक्रम को सराहा और पेंटिंग बनाया। आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं। श्रवण जी, आज क्या क्या क्या कुछ आयोजन हुआ, बताएं इसके बारे में।
2: ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन का प्रोग्राम किया गया जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चे लोगों ने हिस्सा लिया और सबको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया।
1: सब्जेक्ट क्या दिया गया था?
2: थीम था इंस्पायर नेचर ऑफ एंड क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर।
1: तो बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया?
2: बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। सबको उनका पेंटिंग भी बहुत जबरदस्त किया गया।
1: और इसमें जो जो बच्चे पुरस्कार जीते उनका नाम बता दें।
2: एक फर्स्ट डिवीजन आकांक्षा रानी था, सेकंड सत्या और थर्ड सत्यम।
1: आइए बातें करते हैं इन बच्चों से। आकांक्षा, आपने क्या पेंटिंग बनाया था?
3: एनवायरमेंट से रिलेटेड कि हम लोग को कैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर सेव करना चाहिए जिससे कि हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो अच्छे से स्मूथली चल सके।
1: अच्छा, पहले से क्या कुछ थीम पता था या फिर अपने से डिज़ाइन किया आपने?
3: पहले से तो थीम नहीं पता था, जस्ट 2-3 डेज पहले मेरे को पता चला कि ऐसे ड्राइंग बना रहा है तो उसके रिलेटेड बना।
1: अच्छा, अब मान लो कि अभी अब जो हमारी पूरी दुनिया है एक वार्म सिचुएशंस में पहुंच गई है जहां पर जो हमारी प्रकृति है वो भी एक गर्माहट हो गई है, तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो पेंटिंग के माध्यम से?
3: जैसे हम लोग अर्थ बना सकते हैं, उसमें ट्रीज बना सकते हैं जो कि जिसके पत्ते पूरे झड़ चुके हैं, पूरे येलो हो गए हैं। कैसे इंसान बिन पानी के प्यासे हैं, तो वैसा बना सकते हैं हम लोग।
1: अच्छा, आपकी उम्र कितनी है?
3: 11 इयर्स।
1: कितने दिनों से आप ड्राइंग सीख रहे हो?
3: पहले से मैं 2 इयर्स पहले से सीख रही हूँ।
1: सीख रही हूँ। और आज जब जो ड्राइंग का टॉपिक मिला तो दिमाग में कैसे आइडियाज आए?
3: यही एनवायरमेंट से रिलेटेड।
1: मुझे ऐसा बनाना है। अच्छा, आपने बनाया क्या, तो वो दिखाओ एक बार सुनने वालों को।
3: जैसे हम मैंने इसमें बताया कि हम लोग जैसे बहुत सारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं तो उससे हम लोग को कैसे हार्म हो रहा है। उसके बाद मैंने बताया अगर हम लोग ऐसे ही रेगुलरली हार्म करते जाए तो हम लोग का एक दिन ये मतलब कि ये आ जाएगा कि हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग को ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को कैसे ट्री ग्रो करना चाहिए एंड ट्री काटना बंद करना चाहिए और साइकिल्स यूज़ करना चाहिए क्योंकि कार बहुत पॉल्यूट करते हैं, तो उसके लिए।
1: अच्छा, अभी तो इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है, तो उसमें तो प्रदूषण नहीं होता, तो उसके लिए क्या कहो?
3: वो भी अच्छी चीज़ है
1: प्रकृति के लिए ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है बाबू?
4: मेरा नाम सत्यम है।
1: सत्यम, सत्यम आपने क्या बनाया था?
4: मैंने बनाया था कि पेड़ को लगाना चाहिए।
1: पेड़ लगाने से क्या

0: होगा?
1: पेड़ लगाने से ये ऑक्सीजन आएगा।
0: पेड़ लगाने से ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो लोग जिंदा रहेंगे।
1: हाँ।
0: है ना, तो इस थीम पर आपने बनाया था। दिमाग में पहले से आइडियाज थे?
1: हाँ।
0: कौन से क्लास में पढ़ते हो?
1: हम सिक्स में।
0: उम्र कितनी है आपकी?
1: 11 इयर्स।
0: 11 इयर्स। और ड्राइंग कहीं सीख रहे थे पहले से?
1: हाँ।
0: कहाँ पे सीखते हो?
1: नीलिमा क्लासेस।
0: नीलिमा क्लासेस में सीखते हो और वहाँ से बहुत अच्छे से ड्राइंग सिखाया जाता है।
1: हाँ।
0: और आगे क्या बनना चाहते हो?
1: मैं आगे साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ।
0: यहाँ पर आकर कैसा लगा?
1: यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा।
0: यहाँ पे सारे लोग कैसे आपको ट्रीट किए?
1: बहुत अच्छे से।
0: बहुत अच्छे से ट्रीट किए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है बाबू?
2: सत्या कुमार।
0: सत्या, आप कौन से क्लास में हो?
2: सिक्स।
0: सिक्स में। यहाँ कब आए? सुबह में आए? 8 बजे आए। तो आपका थीम क्या था?
2: वाटर को बचाना।
0: वाटर को बचाना, क्यों बचाना है वाटर को?
2: क्योंकि बिना वाटर के इंसान का लाइफ चल नहीं सकता।
0: हाँ।
2: और पॉल्यूशन नहीं करना।
0: हाँ।
2: क्योंकि पॉल्यूशन जितना ही होगा उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना क्योंकि उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलता है।
0: तो आपके घर में मम्मी पापा जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उनको मना करते हो कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए?
2: बोलते हैं। हाँ, मना करते हैं, बोलते हैं पेपर बैग यूज़ करो।
0: पेपर बैग यूज़ करो या जूट का थैला यूज़ करो, है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारा जो धरती है वो क्यों पॉल्यूटेड हो रहा है?
2: क्योंकि हम लोग इतना मतलब कचरा कहीं भी फेंक दे रहे हैं।
0: हाँ।
2: ज़्यादा गाड़ी मतलब ओवर कुछ भी कर रहे हैं हम लोग।
0: हाँ, हाँ।
2: तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से तो ये सब हो गए।
0: हाँ, हाँ। अभी जो गर्मी बढ़ रही है वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ रही है ना।
2: हाँ।
0: आगे क्या बनना चाहते हो?
2: साइंटिस्ट।
0: साइंटिस्ट बनना चाहते हो? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ऐसे कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपका नाम बताओ।
3: मेरा नाम रिया प्रमाणिक है।
0: रिया प्रमाणिक। रिया, आपने जो ऐसे लिखा उसका टॉपिक क्या था?
3: मेरा टॉपिक आवर एनवायरनमेंट पे था। मैंने उस पर अपना थॉट्स लिखा और मैं जो भी सोचती हूँ जिससे एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं, मैंने अपने पूरे फुल्ली थॉट दिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ झारखंड स्टेट बोर्ड को कि मुझे ये मौका मिला और मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाई।
0: एक बार टॉपिक का नाम फिर से बताना।
3: आवर एनवायरनमेंट।
0: आवर एनवायरनमेंट। और आप किस क्लास में हो?
3: मैं 10th में हूँ।
0: 10th में हो। आगे साल बोर्ड देना है?
3: यस।
0: किस से? CBSE या
3: ICSE?
0: ICSE बोर्ड से। कौन से स्कूल में हो?
3: KPS गमरिया।
0: KPS गमरिया में हो, वेरी गुड। और आगे क्या बनना चाहते हो?
3: मैं आगे बैंकिंग पे लाइन के जाना चाहती हूँ।
0: बैंकिंग के लाइन में जाना चाहती हूँ। और अच्छा, आप बताओ, अभी जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के दौर पे गुजर रहे हैं इसका कारण क्या है?
3: सर, इसका कारण है कि हमारी लापरवाही के वजह से इसमें इतना सारा चीज़ हो रहा है, तो हम लोगों को वो कंजर्व करना चाहिए। और जो चीज़ हम लोगों को जितना ज़रूरत है हम लोगों को उतना ही यूज़ करना चाहिए। और जो भी हम लोगों को मतलब जैसे कि हम लोगों को ये वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको गंदा नहीं करना चाहिए, तो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ताकि अगर अभी हम लोग अपना वाटर सेव करेंगे और इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे तो अपकमिंग फ्यूचर के लिए वो अच्छा होगा। तो जब हम लोग अभी ये सब सेव करेंगे तो आगे वाले फ्यूचर के लिए वो लोग अच्छा होगा।
0: चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सर।
0: आपका नाम क्या है?
4: अनुष्का कुमारी।
0: अनुष्का, आपने आपका क्या टॉपिक था लिखने का?
4: इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं और पानी कैसे बचा सकते हैं जिससे फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, मतलब पानी बचे, कुछ दिक्कतें ना आए।
0: अच्छा, अभी तो हम लोग बहुत सारा जो यूज़ है वो प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, तो आपके घर में कौन कौन प्लास्टिक यूज़ करते हैं?
4: मेरे मामा और मेरी मौसी यूज़ करते हैं।
0: ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप मना नहीं करते हो?
4: आप करते हैं। मैंने
0: आप करते हैं। अच्छा, हम लोग पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं बताओ? पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? हर साल 5 जून को इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें और क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही है उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके, है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम?
5: कुमार आदित्य।
0: कुमार आदित्य, आप किस क्लास में हो?
5: 11th।
0: क्या टॉपिक आपने चुना था?
5: नेचर इज आवर एवरीथिंग।
0: नेचर इज आवर एवरीथिंग। तो क्या कुछ आपने लिखा?
5: लिखा है कि अगर नेचर नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। नेचर अगर डिग्रेडेशन होगा तो हम लोग का भी लाइफ स्टाइल भी डिग्रेडेशन होगा। उसके बिना हम लोग की जिंदगी नहीं चल सकती है। और उनके वही हम लोग को सब कुछ दिए है, पानी, हवा और शेल्टर।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है 5 जून को जो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जा सकता है?
5: ये हम लोग मनाते हैं कि हम लोग

0: रिमाइंडर करे कि हम लोग अपना नेचर का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट के ख्याल करें, और ये मेन पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के चलते, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं कुछ भी, जो उसका प्रॉब्लम जो होता है वेस्ट प्रोड्यूस, ये सब उसके कारण से होता है, और मोस्टली फ्रॉम बर्निंग द वेस्ट।
1: अच्छा, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों में पॉल्यूशन कौन फैलाता है?
0: सब पॉल्यूशन ज़्यादा देर ये व्हीकल्स से मिलता है।
1: व्हीकल्स यानी शहरी प्रदूषण ज़्यादा है,
0: उससे बहुत दिन चलाते व्हीकल्स तो उनका जो ये प्रोड्यूस होता है उसके चलते होता ज़्यादा।
1: और यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा?
0: यहाँ पर आके अच्छा लगा।
1: अच्छा लगा,
0: हाँ।
1: और आगे क्या उम्मीद है?
0: आगे उम्मीद है कि हम भी अपना लाइफस्टाइल बेटर करें और पढ़ाई अच्छी तरह से करें।
1: क्या बनना चाहते हो?
0: बनना चाहते हैं सिर्फ ये इंजीनियरिंग के।
1: इंजीनियरिंग करना चाहते हो? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: अभी हमारे साथ जितेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, आइए जानते हैं इनसे कि आज के आयोजन के बारे में क्या कुछ हुआ और कैसा इनको कैसा लगा। सर, अपने बारे में बताएं।
2: प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से आज बच्चों के बीच में अवेयरनेस हेतु ड्राइंग का कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे से अनुरोध किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो आपका जो विचार है अपना व्यक्त कीजिए। इसमें बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ ड्राइंग के माध्यम से और ऐसे के माध्यम से विचार प्रस्तुत किया। उसी में हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार का घोषणा किए और पुरस्कृत किए। इसके अलावा भी जितने बच्चों ने भाग लिया सबको हम लोगों ने सांत्वना पुरस्कार भी दिया है और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जल बचाने का कार्यक्रम करें, बिजली की खपत कम करें, और भी छोटे मोटे जो चीज़ें हैं पंपलेट के माध्यम से भी उनको अवेयरनेस किए हैं और पंपलेट भी जैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जैसे कि आप किसी चौराहे पर रुकते हैं तो गाड़ी का जो ये इंजन है उसको बंद कर दें, वाहन का समय समय पर ट्यूनिंग कराएं, घरों पर छत पर सोलर प्लेट लगाने का प्रयास करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का करें, पेड़ पौधों को सिंचाई में सब्जी धोने में जो प्रयुक्त होता है जल उसका उपयोग करें, नल का जब पानी आवश्यकता नहीं है तो नल को बंद कर दें, वेस्ट फूड को घर पर कंपोस्टिंग कर उसे प्लांटेशन में यूज करें। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी हम लोगों ने पंपलेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, बच्चों के बीच में भी दिया है। तो ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये है। विशेष रूप से हम लोगों ने आज स्पेशल एम्बियंट एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी रखा है जो कि हमारा ऑफिस के सामने में मशीन लगा हुआ है और आज हम लोग देखते हैं कि उस एम्बियंट एयर में पोल्यूटेंट की मात्रा क्या है, इसका आज स्पेशल मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया है।
1: श्रोताओं, जमशेदपुर के कदमा स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। पार्क संचालन समिति के संयोजक राजकुमार दास जी ने कहा कि झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। पूर्व डीएसपी राजेंद्र राय ने एक पेड़ 100 उपकार, पर्यावरण संरक्षण हमारा अधिकार का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने, हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। पार्थ समिति के संयोजक राजकुमार दास जी ने कहा,
3: हम लोग तो ज्यादा यही जान रहे हैं कि भाई हम लोग जो शरीर जो लगता है पेड़, जो जैसे नीम का तेल अभी कोई लगाते हैं, तेल कोई लगाते हैं, कुसुम का कोई तेल लगाते हैं, लेकिन आज का डेट में वो ऐसी हो गया है, मतलब बाजार में भी खोजेगा तो नहीं मिलने वाला चीज है, क्योंकि ये वृक्ष ऐसी चीज है कि आयुर्वेदिक पौधा, मतलब आयुर्वेदिक के रूप में भी हम सेवन करते हैं। तो हमारा ये है कि जितना भी हो, जहाँ तक कि हम लोग कार्यक्रम को किए हैं, प्रत्येक साल ऐसे होते रहे, क्योंकि आज जो हम लोग 5 गांच लेके आए हैं, आने वाला दिन में 10 गांच लगाएंगे।
1: जमशेदपुर के बर्मा वाइन्स थाना में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर वृक्षारोपण किया गया। इसमें सामाजिक संस्था अस्तित्व और जिला पुलिस के सहयोग से 1 दर्जन से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाए गए। वहीं पर्यावरण दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।
4: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बर्मा वाइन्स थाना में वृक्षारोपण किया गया।
5: थाना परिसर में पौधारोपण किए हैं और हमारी संस्था अस्तित्व, हमारा मान, हमारी पहचान के तरफ से प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पर पौधारोपण किया जाता है। इसका संदेश देते हैं हम लोग कि हरियाली सर्वप्रथम है। अगर हमारा देश और हमारा शहर हरा भरा रहेगा तो लोगों का जीवन भी बहुत ही सुंदर होगा।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जमशेदपुर वन प्रमंडल के द्वारा ग्रीन वॉकथॉन का आयोजन किया गया। सोनारी वन प्रमंडल ने इसका आयोजन किया था, जहां स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों के लोग इस वॉकथॉन में भाग लिए और इसकी शुरुआत RCCF स्मिता पंकज और जमशेदपुर DFO सबा आलम ने हरी झंडी दिखाकर किया। सोनारी वन प्रमंडल कार्यालय से शुरुआत हुई, जुबली पार्क मरीन ड्राइव होते हुए लगभग 5 किलोमीटर का वॉकथॉन वापस कार्यालय में आकर समाप्त हुआ। वहीं इस अवसर पर स्मिता पंकज ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज के दिन संकल्प लेने की जरूरत है कि हम हर एक दिन एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, पूरा वायुमंडल गर्म हो रहा है, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को पर्यावरण सुरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए।
6: रीजन पूरा बृहत तरीके से इसका आयोजन किया जाता है और इस बार तो हम लोग एक हफ्ते में लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें सबसे हाईलाइटिंग प्रोग्राम हमारा ये था कि हमारे सुवर्ण रेखा का प्रिंसेस को बहुत अच्छा सा साफ किया है। उससे ये पता चल रहा है कि हम लोगों के यहाँ प्लास्टिक का प्रदूषण काफी है। और कल एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन हम लोग मानगो प्रक्षेत्र कार्यालय में भी किया।
1: बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत शनिवार 6 जून को एक दिवसीय आम महोत्सव बिक्री सह प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने फीता काटकर किया। मौके पर कई जिला पदाधिकारी और अधिकारीगण मौजूद रहे। मेला में एक से बढ़कर एक आम की प्रजातियों को देखने का मौका मिला। किसानों ने अपनी मेहनत से उगाए गए विभिन्न किस्म की आमों को प्रदर्शित किया। किसान भाई बहन काफी उत्साहित और खुश नजर आए। इस मेले में स्थानीय किसानों के द्वारा उगाए गए लंगड़ा, गुलाब, खाशारी, चंपा, सुंदर जा सहित कई दुर्लभ प्रजातियों के आम रखे गए थे। किसान भाई बहनों को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उन्हें बेहतर पौधे, सिंचाई और प्रशिक्षण मिलने से आम की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही कई किसान भाई बहन बड़े बड़े व्यापारियों को भी आम बेच रहे हैं। बड़े व्यापारी इन सभी आमों को विदेश भी भेजते हैं। उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि यह मेला न सिर्फ आम प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, बल्कि किसान भाई बहनों की आय बढ़ाने का भी एक सार्थक कदम साबित हुआ।
7: कर रहे हैं कि जिले में आम का उत्पादन यहाँ पे काफी अच्छा हो रहा है और आप लोग घूम करके यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि अपना लोकल उत्पाद जो है काफी अच्छा यहाँ पे है। और बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत जो बागवानी का यहाँ पे कार्यक्रम योजना चलाया गया था, उस योजना की सफलता इससे दृष्टिगोचर होती है। जो किसान अपने आम का उत्पादन इतना अच्छा क्वालिटी का कर रहे हैं, मल्लिका हुआ, आम्रपाली हुआ, लंगड़ा है और भी कई तरह का यहाँ कई वैरायटी का आम है, तो इस आम की क्वालिटी के कारण ही बाहर के ट्रेडर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है यहाँ पे ये स्टॉल लगाने का मूल उद्देश्य यही है कि लोग इसके तरफ आकर्षित हों और जाने कि अपने जिले में भी इतने अच्छे क्वालिटी का आम हो रहा है, जिससे किसानों को बेहतर इसका मूल्य मिल सकेगा और बाहर के ट्रेडर्स भी आकर्षित होंगे तो और भी अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसा विगत वर्ष भी यहाँ से आम बाहर
8: और आम उनको अच्छा लगेगा तो ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। ये बस किसानों को हम लोग प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आम का जो नरेगा के माध्यम से जो इन लोगों को दिया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था बागवानी का और इनको आम लगाने के लिए जो हम लोग स्कीम प्रारंभ किए थे उसकी सफलता है। यहाँ पे इतना सारा आम जो आपको प्रदर्शित हो रहा है, वो भी नया नया वैरायटी का, ये वैरायटी ऐसे सामान्यता नहीं होता था, तो ये वैरायटी का आम ये लोग लगाए हैं, उनकी मेहनत का ये फल है। हाँ, ये भी हम लोग कर रहे हैं, बाजार हम लोग देख रहे हैं मार्केट, और लोग आए हुए हैं, ऐसे बाहर से लोग आए हुए हैं आम को क्रय करने के लिए। अगले सप्ताह में ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ बाहर से लोग ट्रेडर्स आएंगे और आम उनको अच्छा लगेगा तो ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे।
1: प्रसिद्ध फिल्मकार, लेखक एवं पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास की स्मृति में भारतीय जन नाट्य संघ जमशेदपुर द्वारा आयोजित 7 दिवसीय बाल रंग कार्यशाला का समापन 7 जून को हुआ। 1 जून से शुरू हुई इस कार्यशाला में बच्चों को अभिनय और रंगमंच की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह 6 बजे ट्राइबल कल्चर सेंटर में आयोजित हुआ, जहाँ प्रशिक्षु बच्चे प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई की कहानी उखड़े खम्भे

पर आधारित नाटक का मंचन किया। नाटक का निर्देशन छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य शैली के ख्याति प्राप्त कलाकार निर्देशक निसार अली ने किया। आयोजन समिति ने शहरवासियों और कला प्रेमियों के कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया था और बहुत सारे बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रतिभा का मंचन किया और अपनी अपनी कविताएं जो है वो प्रस्तुत की।

श्रोताओं, ये थी शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। अब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से अनिमेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

शहर के विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हम हैं राही प्यार के इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म में लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, बोल हैं समीर के, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अगले गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। लीजिए सुनिए फिल्म एक लड़का एक लड़की का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने सुना कुरुक्षेत्र फिल्म का गीत। गीतकार थे देव कोहली, संगीतकार हिमेश रेशमिया। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा, विशाल शेखर का संगीतबद्ध गीत। फिल्म है हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से समाचार मुख्यांश का प्रसारण होगा।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 56% से बढ़ाकर 60% करने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार यह वृद्धि केंद्र सरकार के अनुरूप की गई है और इसका लाभ मूल वेतन पर ही मिलेगा। जामताड़ा पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना अंतर्गत तेतुलबांधा गांव के निकट 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में आज जिला पुलिस की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम युववाणी थोड़ी ही देर में।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट तनु। आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने ना केवल झारखंड बल्कि पूरे आदिवासी समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और पहचान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। झारखंड की मिट्टी में आज भी जिनके संघर्ष की गूंज सुनाई देती है, जिनके नाम का जय घोष गाँव गाँव में होता है, ऐसे महान जन नायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। और मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को संपूर्ण आकाशवाणी की ओर से शत शत नमन करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला युवा कैसे लाखों लोगों के लिए आशा और बदलाव का प्रतीक बन गया? कैसे इतनी कम उम्र में उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी आज भी हमें प्रेरित करती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करें उनके संघर्ष, उनके विचारों और उनके उस अदम्य साहस को जिसने इतिहास के पन्नों पर उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया। दोस्तों, 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, उसकी संस्कृति और उसकी अपनी पहचान है। उस समय अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण से आदिवासी समाज परेशान था। लोगों की जमीनें उनसे छीनी जा रही थी और उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर भी संकट मंडरा रहा था। पर बिरसा मुंडा के विचारों में ऐसी क्या शक्ति थी जिसने हजारों आदिवासियों के स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार की लड़ाई को जन आंदोलन का रूप दे दिया। दोस्तों, बिरसा मुंडा का ऐसा मानना था कि किसी भी समाज की पहचान उसके जंगल, जल और जमीन से जुड़ी होती है। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों को पहचाने, संगठित हो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। पर अंग्रेजी शासन को उनका बढ़ता प्रभाव खटकने लगा। वर्ष 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल की सलाखें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। लगभग 2 साल बाद रिहा होने पर वे और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लोगों के बीच लौटे और अपने आंदोलन को एक नई दिशा दी। चलिए अब जानते हैं कैसे उनके नेतृत्व में शुरू हुआ उलगुलान अंग्रेजी शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। दोस्तों, वर्ष 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान मतलब महान जन विद्रोह शुरू हुआ। यह केवल विद्रोह नहीं था बल्कि अपनी पहचान, अपने अधिकारों और अपनी जमीन की रक्षा का एक व्यापक आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने लोगों को अबुआ राज यानी अपना शासन स्थापित करने और अन्याय के विरुद्ध एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदु जाना, मतलब हमारा राज स्थापित हो, रानी का राज समाप्त हो। यही संदेश लोगों के दिलों में उतर गया और एक विचार धीरे धीरे जन आंदोलन में बदल गया। उलगुलान की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इससे चिंतित अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के निकट जामकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय तक उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रांची जेल में रखा गया। फिर 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में हैजा बीमारी से उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु के साथ उनके विचार समाप्त नहीं हुए। उनके संघर्ष ने आगे चलकर आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनों और आंदोलनों की नींव रखी।

आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ, बिरसा मुंडा इतिहास का केवल अध्याय नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनके इसी अटूट संकल्प और साहस को सलाम करते हुए सुनते हैं एक जोशीला प्रेरणादायक गीत, चले चलो।

अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म का गीत, जिसमें स्वर दिए हैं एआर रहमान और श्रीनिवास ने, संगीतकार है एआर रहमान और गीतकार है जावेद अख्तर। दोस्तों, यह गीत हमें निरंतर आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। यही संदेश भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष में भी देखने को मिलता है। आज के दौर में भी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है रोजगार और आत्मनिर्भरता। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए, जहां अवसरों की कमी की बात अक्सर की जाती है, लेकिन क्या वास्तव में गांव में रोजगार के अवसर सीमित हैं, या फिर बदलते समय के साथ नए विकल्प हमारे सामने उभर रहे हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ अब हम चर्चा करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और विकल्प क्या है।

श्रोताओं, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और देश की एक बड़ी युवा आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हालांकि बदलते समय के साथ यह तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। आज ग्रामीण युवा कृषि, पशुपालन से लेकर लघु और कुटीर उद्योगों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन क्या केवल पारंपरिक क्षेत्र ही आज रोजगार का आधार है, या फिर तकनीक और डिजिटल क्रांति ने गांवों के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे भी खोल दिए हैं? आइए आगे जानते हैं। दोस्तों, आज का ग्रामीण युवा केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने गांव और शहर के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाएं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। ग्रामीण युवा कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल सेवा केंद्र, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ग्रामीण स्टार्टअप जैसे मौकों की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, कई युवा अपने स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के ग्राहकों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं तो केवल अवसर ही पर्याप्त नहीं होता, आवश्यक है सही मार्गदर्शन, कौशल विकास और प्रशिक्षण की। आखिर कौशल विकास ग्रामीण युवाओं को किस तरह नई दिशा दे रहा है, आइए जानते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से युवा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार नए कौशल सीख रहे हैं और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्वरोजगार योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को न केवल प्रशिक्षित बल्कि आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसका परिणाम यह है कि आज अनेक युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। ग्रामीण युवा आज केवल अपने भविष्य को संवारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं और उनकी ऊर्जा, नवाचार और मेहनत विकसित भारत के सपने को कहीं ना कहीं साकार कर रही है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय है अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक खूबसूरत गीत और गीत के बाद चर्चा करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे एक गंभीर चुनौती बन गया है। बने रहिए हमारे साथ।

आप सुन रहे थे फिल्म संजू का गीत, जिसमें स्वर दिए हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने, संगीतकार है विक्रम मॉन्ट्रोज और गीतकार है शेखर अस्तित्व। दोस्तों, स्वादिष्ट दिखने वाला हर खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो ये जरूरी तो नहीं। आजकल खाने पीने की कई चीजों में मिलावट की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है। आप भी मेरी बातों से कहीं ना कहीं सहमत जरूर होंगे। दूध हो, मसाले हो या हो मिठाइयां या कोई अन्य खाद्य सामग्री, मिलावट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज्यादा फायदे के लालच में कुछ लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन ये मिलावट कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, खाने पीने की चीजों में मिलावट का मतलब होता है उसकी क्वालिटी को घटाना और लागत कम करने के लिए उसमें सस्ती और अवांछित चीजों को मिलाना। जिसे खाद्य पदार्थ देखने में तो बिल्कुल सामान्य लग सकता है, लेकिन उसके पोषक मूल्य और स्वास्थ्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी और लगातार सेवन से कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जागरूक उपभोक्ता बने। लेकिन क्या केवल मिलावट के बारे में जानना काफी है? जी नहीं। सवाल ये है कि हम खुद को और अपने परिवार को ऐसी मिलावटी चीजों से कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। साथियों, सबसे पहले खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग, कब बनाया गया है, एक्सपायरी डेट कब है और किसी ट्रस्टेड सोर्स या ब्रांड का है या नहीं, इस बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जागरूक उपभोक्ता ही मिलावट के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है।

दोस्तों, खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूक रहना ही केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होना भी इसका एक परिचायक है। क्योंकि जब नागरिक जागरूक होगा तभी समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत बनता है तभी राष्ट्र का विकास भी होता है। यही बातें हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाती है, जो है राष्ट्र प्रथम की भावना। राष्ट्र प्रथम की भावना कैसे हमारे देश भारत को विकासशील से विकसित बनाएगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होता। विकसित भारत का सपना एक ऐसे राष्ट्र का सपना है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार सभी तक समान रूप से पहुंचे, और जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बहुत अहम भूमिका है। यही कारण है वॉइस ऑफ यूथ जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि इससे करोड़ों युवा जुड़ सके। लेकिन क्या विकसित भारत का निर्माण केवल सरकारों की जिम्मेदारी है, या फिर सभी नागरिकों की भी उतनी ही अहम भूमिका है, आइए जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्र प्रथम की भावना का अर्थ है हर निर्णय और हर कार्य में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना। और क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं? क्या हम नियमों का सम्मान करते हैं? और क्या हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप भारत को विकसित बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत की परिकल्पना में युवा महिलाएं, किसान और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण आधार है। तो क्या हम कह सकते हैं कि विकसित भारत केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा संकल्प है।

दोस्तों, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब मैं से ऊपर उठकर हम की भावना को अपनाया जाएगा। और राष्ट्र प्रथम का विचार केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आइए हम सभी एक संकल्प लें, राष्ट्र रहे सबसे ऊपर, यही हो हमारी पहचान। कर्तव्य, मेहनत और समर्पण से बनाए विकसित भारत महान। कर्तव्य, मेहनत और समर्पण से बनाए विकसित भारत महान।

चलिए अब समय हो चला है कुछ सांसारिक खबरों का। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक युगांडा दौरे पर, इबोला तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।

खेल समाचार। आईसीसी ने आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी की। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ मेरे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तनु आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई चर्चा और नए विचार के साथ। नमस्कार।

0: युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने थोड़ी ही देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

कार्यक्रम कल कारखाने सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को इंदु का प्यार भरा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि मात्र 25 साल की उम्र में पूरे देश और समाज के लिए कोई भगवान कैसे बन जाता है? जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उल गुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की। आज जब हम भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन को बचाने की उस अटूट कसम को याद कर रहे हैं जो आज भी हमारे खून में दौड़ती है। इतिहास गवाह है कि क्रांतियां उम्र देखकर नहीं आती, हौसला देखकर आती है। तो चलिए श्रोताओं, उनके शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए सुनते हैं ये गीत।

एयरलिफ्ट फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, के और अमाल मलिक की आवाज़ में। गीत लिखा कुमारनी और संगीत अमाल मलिक का था।

0: और श्रोताओं आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं थायराइड की। जी हाँ श्रोताओं, थायराइड हमारे गले में सामने की तरफ स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और दिल की धड़कन तापमान को नियंत्रित करते हैं। जब इन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो चलिए इसी से संबंधित आपको सुनवाते हैं पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय ही है थायराइड हार्मोन से संबंधित समस्याएं एवं समाधान। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव और इनसे बातचीत कर रही हैं मालती चौधरी।
1: आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं टाटा मोटर्स अस्पताल के मेडिसिन एंड इंसेंटिव केयर के चीफ डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे थायराइड हार्मोन से संबंधित समस्या एवं समाधान विषय पर। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि थायराइड है क्या।
2: थायराइड जो है हमारे शरीर का एक ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको, जो कि हमारे शरीर का जो गला है इसके निचले पार्ट में एक तितली की तरह बटरफ्लाई शेप का होता है।
1: अच्छा।
2: जो गर्दन के दोनों तरफ एक पंख की तरह जैसे तितली का होता है वैसा, और बीच का एक पार्ट सेंटर में रहता है। ये नॉर्मल ग्लैंड हमारे शरीर में, सभी के शरीर में रहता है ये ग्लैंड।
1: तो इसका शरीर में क्या काम होता है
2: ये क्या? जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये हमारे शरीर में हार्मोन बनाती है।
1: अच्छा।
2: और ये जो हार्मोन है इस ग्लैंड में बनता है और इस और हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू पूरे शरीर में जाता है। और इसका जो ग्लैंड का जो काम है, जो थायराइड ग्लैंड का जो काम है, ये थायरोक्सिन बनाता है।
1: अच्छा।
2: थायरोक्सिन जो हमारे शरीर के ग्रोथ में ज़रूरत है, हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरत है, मेंटल ब्रेन के विकास के लिए ज़रूरत है, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत है। तो ये जो ग्लैंड हमारे थायरोक्सिन जो सेक्रेशन होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, इसका काम है हमारे शरीर के ग्रोथ को नियंत्रण करना, शरीर के जो ब्रेन का विकास करना, और हमारे शरीर को एक तरह से बोल सकते गर्म रखने के लिए है।
1: अच्छा।
2: तो हमारे इस ये जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही जरूरी इसका रोल होता है।
1: यानी थायराइड एक ग्रंथि है जो एक हार्मोन्स का स्राव कर वहाँ जहाँ से होता है, और उस हार्मोन्स को आपने बताया कि थायरोक्सिन कहते हैं।
2: बिल्कुल जी।
1: और इसका काम हमारे शरीर में जैसे आपने बताया कि ग्रोथ में
2: काम होता है,
1: मेटाबॉलिज्म में।
2: बिल्कुल।
1: इस ये बहुत लाभ पहुंचाता है।
2: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी हार्मोन है
1: जी। तो इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, या आप ये कहिए कि थायराइड बीमारी किस कारण से होती है?
2: जो थायराइड जो बीमारी है

0: हमारा इसमें मेन कारण जो होता है आयोडीन जो है, एक मेटल है, नॉन मेटल रहता है, आयोडीन की कमी से
1: जी
0: एक बीमारी हो सकती है थायराइड की। कुछ कुछ दवाई का साइड इफेक्ट से थायराइड की बीमारी हो सकती है।
1: अच्छा।
0: या बहुत समय कुछ रेडिएशन, जो रेडिएशन की वजह से भी थायराइड की बीमारी हो सकती है। रेडिएशन मीन्स जो हम लोग सेकाई बोलते हैं, बहुत समय किसी किसी लोगों को देखिए कैंसर वगैरह होता है, ग्लैंड बढ़, ग्रंथि बढ़ जाते हैं, तो उसमें लोग सिकाई लेते हैं, तो उस सिकाई की वजह से भी थायराइड ग्लैंड डैमेज हो सकता है।
1: अच्छा।
0: तो जिसकी वजह से थायराइड में प्रॉब्लम आ सकता है।
1: माने मुख्यतः रूप से यह आयोडीन की कमी से होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आयोडीन किस में पाया जाता है?
0: आयोडीन नेचर में मिलता है
1: जी,
0: नेचुरल सोर्स है, खाने पीने में, खासकर जो समुद्री जो जीव जंतु हैं
1: जी
0: वहाँ मिलता है।
1: अच्छा।
0: या हमारे जो पानी में भी रहता है, आजकल जो है हमारे नमक में, जो हम जो नमक खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट है वो।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना आयोडीन के नमक हम नहीं, बाजार में नहीं मिलेगा आपको, और गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है। पहले देखा गया था कि जितने भी, आपने सुना होगा घेघा रोग के बारे में ना, गोइटर जिसको बोलते हैं, गर्दन का जो थायराइड का ग्लैंड जो है बहुत बढ़ जाता है, ये जो बढ़ता है मेन कारण था हमारा आयोडीन की कमी से, जो कि हमारे जो कुछ कुछ रीजन है देश के, सब हिमालयन रीजन बोलते हैं उसको, वहाँ पर इसकी बहुत कमी देखी गई थी, और वहाँ के लोगों में इस तरह का थायराइड का जो गोइटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। उसके बाद से जब देखा गया कि नहीं, जब प्रॉब्लम हो रहा तो गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी सॉल्ट होंगे वो आयोडाइज सॉल्ट ही होंगे, बिना आयोडीन के सॉल्ट नहीं आप मार्केट में बेच सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इस, जब से ये आयोडाइज सॉल्ट हम लोग लेना शुरू किए तब से ये थायराइड आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की का जो बीमारी है बहुत कम हो गया है।

0: ये कितने प्रकार का होता है ये बीमारी?
1: इसको ब्रॉड में देखिएगा तो दो तरह का, एक या तो थायराइड ग्लैंड से हमारे यहाँ शरीर में कम बन रहा है थायरोक्सिन, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपो
0: और हाइपर,
1: हम मेन ये दो है, हाइपो
0: हाइपो में ये कम बनाता है
1: राइट,
0: और
1: हाइपर में ज्यादा बनता है। तो दोनों का अलग अलग आपको सिम्टम होता है
0: जी,
1: जो लक्षण बोलते हैं जिसको।
0: तो हाइपो के क्या लक्षण है?
1: तो हाइपो के लक्षण होंगे जैसे शरीर का वेट बढ़ना,
0: अच्छा,
1: कमजोरी लगना, नींद ज्यादा आना, ठंड ज्यादा लगना, ठीक है, स्किन ड्राई हो जाना, हेयर लॉस होता है, बाल झड़ जाना, तो ये सब बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन, ये सब बीमारी जो होता है ये बिकॉज थायरोक्सिन के कमी से होता है, और इसका उल्टा हो सकता है जब हाइपरथायरॉइडिज्म जिसको बोले, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है वहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो आपका जो धड़कन तेज हो जाता है, वेट लॉस हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा लोगों का, इसमें भी बाल झड़ेंगे, इसमें भी जैसे फीमेल में जैसे ज़्यादा होता है जब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, मासिक का प्रॉब्लम या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, दोनों प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इवन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है
0: जी,
1: प्रेगनेंसी या तो नहीं होना है ना, या होने से लॉस हो जाना, तो ये प्रॉब्लम हो जाए, और ज़्यादा से खासकर बच्चों में ग्रोथ की जरूरत है, बच्चे ग्रो करते हैं ना, उस वहाँ पर खासकर अर्ली चाइल्डहुड में उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन है, अगर उस बच्चे में अगर कमी हो गई तो उनका ग्रोथ नहीं होता है, दोनों लंबाई भी नहीं बढ़ेगा और ब्रेन का भी ग्रोथ नहीं होता, वो लोग मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। तो इसलिए ये इस चीज़ के जागरूक होना पड़ेगा सभी को कि खासकर जब भी देखे बच्चे अगर छोटे बच्चे अगर ग्रोथ सही नहीं हो रहा है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा, तो हमें थायराइड का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए।
0: अच्छा, तो थायराइड मानसिकता से इसका क्या लेना देना है या ब्रेन से इसका कोई लेना देना क्या?
1: बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो इसके जरूरत पड़ती है हमारे याददाश्त को ठीक रखने के लिए, बहुत या तो बहुत लोग जिसकी कमी हो तो लोग डिप्रेशन हो जाता है ना,
0: अच्छा,
1: डिप्रेशन का रोग हो सकता है,
0: ये इसके साइड इफेक्ट,
1: इसका बीमारी का एक लक्षण हो सकता है,
0: और इसके क्या क्या लक्षण हैं, इस बीमारी को कैसे पहचाने की?
1: जैसा कि मैंने कहा कि अगर इस तरह सिम्टम आता है, या तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वेट या हेयर लॉस हो रहा है, स्किन ड्राई हो गया, ज़्यादा ठंडा लगना या ज़्यादा उल्टा भी, ज़्यादा गर्म भी होना, वेट लॉस होना, तो दोनों हाइपो है या हाइपर है, उसके लिए कन्फर्म करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट करने पर ही हमें पता चलेगा थायराइड का क्या लेवल है, उससे पता चल जाएगा आपको हाइपोथायराइड है कि हाइपरथायराइड है। अच्छा। दोनों चीज़ का जो है इलाज है।
0: अच्छा।
1: सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके पास इस बीमारी का इलाज है, अगर सही समय में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो हम इसका इलाज कर सकते हैं, और दवाई खाने से ठीक रहता है।
0: तो ये ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है या महिलाओं में?
1: आपने ये देखा गया कि ऑलमोस्ट ये 8 से 10 times ज़्यादा, 8 गुना, 8 से 10 गुना ज़्यादा टाइम्स फीमेल में पाया जाता है।
0: तो फीमेल में यानी महिलाओं में ये
1: ज़्यादा पाया जाता है। उन लोगों में ये प्रॉब्लम भी होता है, जैसे मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों को, तो जब भी महिला में इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उनको थायराइड के चेकअप करा लेना चाहिए। और जो लोग बहुत सारे पेशेंट हैं जो थायराइड की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं थायरोक्सिन की
0: जी,
1: और प्रेगनेंसी पता चला पहली बार, तो उनको तुरंत डोज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रेगनेंसी के समय थायरोक्सिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो जैसे पता चले कि प्रेगनेंसी आ गया है तो हमें डोज उसको नहीं भी तो 30-50% बढ़ा देना रहता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में ही बताया था कि थायराइड जो है वो थ्रोट यानी हमारे गले से संबंधित रोग है, तो थ्रोट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे इसको कुछ इफेक्ट आता है?
1: कभी कभी जो जैसा का हाइपोथायराइड में लोग को थोड़ा ठंडा वगैरह ज़्यादा लगता है तो सोर थ्रोट वगैरह हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कब होता है, मान ली थायराइड जैसा कि मैंने कहा घेगा ग्वाइटर बहुत बड़ा साइज हो गया, बहुत बड़ा बढ़ गया, तब ये क्या कर सकता है कि आपके जो सांस की नली को या खाने की नली को दबा सकता है।
0: अच्छा।
1: जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है, वो खासकर थायराइड के कैंसर में होता है, नॉर्मल थायराइड में नहीं होता, थायराइड कैंसर में इस तरह प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है।

0: तो खान पान से भी ये संबंध रखता है क्या ये रोग? खान पान
1: जी
0: में कुछ परहेज या
1: हाँ जी, परहेज करना पड़ता है, खासकर जो लोग हाइपोथायराइड वाले हैं, जो कम थायराइड वाले हैं, उनको जो हम लोग बोलते हैं फूल गोभी या
0: जी
1: बंदा गोभी
0: जी
1: या चुकंदर, शलजम, इस तरह का चीज़ जिसमें कि ग्वाइट्रोजेन होता है जो कि आपका थायराइड हार्मोन बनाने नहीं देता है शरीर में, तो इस तरह के चीज़ों को हमें अवॉइड करना रहता है खाने में।
0: और अभी इन दिनों डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थायराइड के पेशेंट बहुत पाए जा रहे हैं,
1: जी
0: तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है?
1: हमारा खान पान है
0: खान पान
1: नंबर वन, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, रेडिएशन एक्सपोजर है,
0: जी
1: सब कुछ कुछ बीमारी जो ऑटो इम्यून होता है, शरीर हमारे शरीर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता है, ऑटो इम्यून बोलते हैं, उसमें हो सकता है। और आयोडीन की कमी आजकल कम पाई जा रही है, क्योंकि मैंने कहा आजकल आयोडाइज सॉल्ट हम लोग लेना शुरू कर दिए।
0: जीवन शैली से भी इसका कोई संबंध है क्या? क्योंकि आजकल जैसे हमारी जो जीवन शैली हो गई है बहुत आपाधापी वाली जिंदगी है,
1: जी
0: रात में लोग जगते हैं,
1: जी
0: काम का बहुत प्रेशर है, तो
1: जो
0: इससे भी होता
1: डायरेक्ट
0: है?
1: रिलेशन तो नहीं है,
0: डायरेक्ट नहीं
1: डायरेक्ट
0: है।
1: रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर थायराइड अगर है तो आपको जैसे हाइपोथायराइड वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा रस हो सकता है,
0: जी
1: तो हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो अगर जीवन शैली अगर सही है तो आपका जो कि बाकी सब प्रॉब्लम को भी कम करता है, वेट कम करेगा, आपका हार्ट का प्रॉब्लम कम करेगा, तो हमें जीवन शैली को ज़रूर जैसे वॉकिंग हुआ, डाइट कंट्रोल हुआ, वो सब करना चाहिए।
0: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बस यही संदेश है कि ये जो बीमारी है इसका क्योर है, इसका इलाज है। तो अगर जब भी इस तरह का कुछ उस तरह से थायराइड रिलेटेड सिम्टम अगर महसूस होता है
0: जी
1: तो जल्द से जल्द ब्लड टेस्ट करवा लें और अपने जो नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे काफी लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थायराइड हार्मोन से संबंधित समस्याएं एवं समाधान, इस विषय पर श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव और इनसे बातचीत कर रही थी मालती चौधरी।

और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बातचीत कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, किसी ने सच ही कहा है कि बेटी के बिना घर अधूरा है, क्योंकि वह त्योहारों की रौनक होती है, रिश्तों की मिठास है और भविष्य की उम्मीद भी। क्योंकि किसी घर में जब बेटी पढ़ती है तो वो केवल खुद नहीं बढ़ती बल्कि पूरे परिवार को आगे ले जाती है। पर देश में आज भी कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता है कि लोग बेटी को पढ़ाना तो दूर, उसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहते, जिसके कारण देश में बेटियों का लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है। वहीं श्रोताओं, इस गंभीर समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ही है लिंग अनुपात में आ रही गिरावट को रोकना और बेटियों को शिक्षा और सशक्तिकरण के समान अवसर देना। वैसे श्रोताओं, आपको बताएं कि आज कई राज्यों में इस योजना के लागू होने के बाद से बाल लिंग अनुपात में सुधार देखा गया है और स्कूलों में भी लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि समाज के सामूहिक दायित्व को दर्शाती है। जब बेटी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल संदेश यही है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि देश की प्रगति की आधारशिला है। ये एक सशक्त बेटी एक सशक्त राष्ट्र बनाती है। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये मधुर गीत।

मन की आंखें इस फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीत साहिर लुधियानवी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम कल कारखाने से मुझे यानी इंदु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
5: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
4: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, Vinimay, in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said, the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.
3: कि लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
6: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट्स हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एड्रेसिंग दिस एज वेल
3: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
4: Defence Ministry has approved the establishment of a 250-megawatt solar power project with Battery Energy Storage System, BESS, at Sitapur in Uttar Pradesh. This system will be established on approximately 850 acres of vacant defence land. This is the first of its kind project undertaken by the Ministry of Defence involving the development of a large-scale solar power generation facility with integrated BESS support on defence land. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda has said that in the last 10 years, the government is continuously strengthening the healthcare facilities for women during pregnancy through the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Mr. Nadda said this while launching the nationwide celebrations to commemorate 10 years of the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today visited the National Testing Agency headquarters and reviewed preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said that the centre has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. In US, thousands of skilled immigrants are set to benefit after a federal judge struck down the Trump administration's proposed $1 lakh H-1B visa fee and called it unlawful. US District Judge Leo Sorokin issued the decision following a lawsuit filed by 20 Democratic State Attorneys General. The lawsuit challenged a policy announced by President Donald Trump in September last year that sought to increase the H-1B visa application fee from about $2,000 to $1 lakh. And that is the end of this news bulletin.

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत के साथ मैं राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं थॉमस बाजराय व साथी।

0: आप सुन रहे थे मुंडारी लोकगीत, कलाकार थे थॉमस बाजराय व साथी। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

भगवान बिरसा मुंडा के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम कृषि जगत। आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ आपका वही जाना पहचाना दोस्त राजेश जोहार। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे पटमदा के युवा किसान युधिष्ठिर महतो। साथ ही विभिन्न विषयों पर हम करेंगे आपसे बातचीत और सुनेंगे एक मधुर लोकगीत, लेकिन आगाज बिरसा मुंडा के शौर्य गाथाओं के साथ। कृषक मित्रों, आज है 9 जून और आज ही के दिन सन 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा शहीद हुए थे। वे भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के आखिरी समय में झारखंड में आदिवासियों की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक युग का सूत्रपात किया था। आदिवासियों के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए आज भी उनकी तस्वीर संसद के संग्रहालय में लगी है। उन्होंने आदिवासियों की जमीन को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक अलग जंग लड़ी और आबुआ दिशुम आबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। उनके इस आंदोलन से अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी और पूंजीपति तथा जमींदार उनसे डरने लगे। अंग्रेजी हुकूमत ने इससे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके

वर्षों में भारत ने अपनी डिजिटल अवसंरचना का तेजी से विस्तार किया है। इसने करोड़ों नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले को मुख्य धारा से जोड़ने और मूलभूत बैंकिंग व सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में अहम भूमिका निभाई।

देश के हर कोने तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवास, बिजली और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करोड़ों मकान बनाए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना जैसी पहल से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान और पीएम सुरक्षा बीमा योजना ने गरीबों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान समावेशी विकास को भारत की रणनीतियों के केंद्र में रखा गया। जी राम जी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। समावेशी विकास के मुख्य घटकों में सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का समान विस्तार और युवाओं की आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण शामिल है।

0: किसान भाइयों, आज के युग में आजकल के जो युवा हैं खेती किसानी से दूर भागते जा रहे हैं, लेकिन यदि वह नई तकनीक का उपयोग कर खेती करेंगे तो कृषि का क्षेत्र उन्हें काफ़ी लाभ दे सकता है। कृषि में नई तकनीक का उपयोग और युवा किसान, इसी विषय पर आइए सुनते हैं एक युवा किसान युधिष्ठिर महतो से की गई बातचीत का ये अंश। श्रोताओं, कृषि जगत के आज के अंक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी लगन, नई तकनीक का इस्तेमाल और सरकारी सहयोग से खेती किसानी के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ हैं पटमदा के रहने वाले प्रगतिशील किसान श्री युधिष्ठिर महतो। महतो जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: युधिष्ठिर जी, आप किस किस चीज की खेती करते हैं और कैसे अपनी खेती में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं?
1: देखिए, हम लोग का यहाँ तो मेनली टमाटर, बैगन और गोभी की जाती है
0: जी।
1: तो इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे तो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं या प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगी।
0: अच्छा,
1: इसमें हम लोग संरक्षित खेती करते हैं, जो पॉली हाउस नेट आउट या सेट नेट आउट का इस्तेमाल करके करते हैं। आपका जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, लो टनल का इस्तेमाल करते हैं।
0: हाँ। ये सब तो पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती में क्या अंतर आपको नजर आता है?
1: पारंपरिक खेती में पहले जो जिस तरीके या जमीन या क्लाइमेट था अभी ऐसा नहीं है
0: जी।
1: तो पारंपरिक खेती करेंगे तो किसान मुनाफा नहीं कर सकते, या जिसका उसका हाईएस्ट यील्ड होनी चाहिए वो नहीं होगी,
0: ज्यादा फायदा नहीं होगा,
1: ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगी। तो हम लोग को मॉडर्न खेती या टेक्निकल खेती करना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर में ये कंपलसरी हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी का बिना हेल्प से हम लोग मतलब खेती कर ही नहीं सकते
0: जी। जी।
1: और एक चीज है, हम लोग जैसे कि जो फर्टिलाइज लैंड होते हैं हम लोग यहाँ जमीन की मिट्टी
0: जी,
1: वो अपनी उर्वरक क्षमता जो है वो खो चुकी है केमिकल डाल।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो हाँ, तो इसीलिए हम लोग को धीरे धीरे उसके प्राकृतिक खेती के ऊपर भी आना पड़ेगा आगे जाके।
0: अच्छा, सरकारी योजनाओं का आप किस तरह से फायदा उठाते हैं?
1: हाँ, सरकारी योजना हम लोग का यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम होती है। जैसे कि आपको अगर सेटनेट हाउस वगैरह देते हैं तो वो भी सरकार के योजना में आते हैं।
0: अच्छा।
1: पॉली हाउस आते हैं, आपका ड्रिप इरिगेशन भी आते हैं
0: जी।
1: जैसे पॉली हाउस ये सब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगी।
0: अच्छा,
1: ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और हम लोग का जो यहाँ के लोकल एफपीओ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक मृगभ्यम है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, मृगभ्यम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पटमदा का ही है। तो इन लोग बहुत सारा सहयोग मिल जाता है यहाँ से। अगर सरकारी योजना कुछ चाहिए होता है या जो जरूरत का चीज होता है, उन लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग ये काम कीजिए, हम आपको ये सरकार की योजना के अंतर्गत वो अप्लाई कर देंगे।
0: अच्छा,
1: तो यहाँ का किसान का वो बहुत फायदा हो जाता है वो चीज।
0: तो खेती में नई तकनीकें अपनाने के लिए

0: आपने कहीं से कुछ विशेष ट्रेनिंग ली है?
1: हाँ, विशेष है कि ये आपका ये हॉर्टिकल्चर का ही एक्सपोजर था एक
0: अच्छा
1: आपका ग्रेटर नोएडा में, तो
0: अच्छा यहाँ से आपको
1: हाँ
0: ग्रेटर नोएडा ले जाया गया था।
1: हाँ हाँ भेजा गया था, तो
0: जी जी
1: वहीं से हम मेरे को आइडिया आया कि हम लोग भी ये चीज अपने लोकल एरिया में क्यों नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो हम आके देखें कि अपना जमीन भी ऐसे सुइटेबल तो है, तो उसमें हम लोग बातचीत किए, फिर एफपीओ लोगों के साथ बात किए, फिर बोल रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, हम आप लोगों को सरकार की योजना के अंतर्गत प्रोवाइड करा देंगे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो उन लोग के साथ मिलजुल के हम लोग अच्छी तरह से अभी हो रहा है काम।
0: तो ये आप लोग स्वयं गए थे कि सरकार आप लोगों को लेके गई थी?
1: हम लोग ऐसे में तो मतलब सरकार लेके गए थे वहाँ,
0: अच्छा
1: वहाँ से एक योजना के अंतर्गत ही आता है
0: अच्छा अच्छा
1: परिभ्रमण बोल के, 5 डेज का होता है
0: तो
1: वो, आउटसाइड एक्सपोजर होते हैं वो।
0: ये पूरे देश से किसान आए होंगे वहां पे?
1: हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं।
0: तो किस तरह का वहाँ ट्रेनिंग मिला, प्रशिक्षण आप लोगों को किस तरह का मिला, क्या क्या नया चीज आप वहाँ सीखे?
1: वहाँ देखिए, वहाँ कैसे के मतलब कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हर एक चीज का टेक्नोलॉजी से कैसे यूज करें,
0: अच्छा
1: ऑटोमेशन कैसे बनाए एग्रीकल्चर सेक्टर को। हाँ, जैसे अभी नया तकनीकें आ रहा है कि ग्राफ्टेड प्लांट का इस्तेमाल, अभी जैसे पटना में ज्यादातर वही चल रहा है,
0: हाँ
1: ग्राफ्टेड प्लांट का कैसे करें, ग्राफ्टेड प्लांट कैसे बनाए, या ग्राफ्टेड प्लांट की खेती को मैनेजमेंट कैसे कर अच्छे तरह से कर सके, ताकि किसान को कम मेहनत में अच्छी मुनाफा मिले। हालांकि हम लोग का यहाँ जो है सबसे दिक्कत लेबर का भी होती है,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: विदाउट हम लोग टेक्नोलॉजी का बिना हेल्प लेके हम लोग प्रोडक्शन ले नहीं सकते हैं, या बड़े पैमाने में नहीं कर सकते।
0: मैंने जैसा यहाँ का जमीन है और जलवायु है और लेबर की कमी है,
1: हाँ
0: इसके कारण आप
1: हाँ
0: लोग को नई तकनीक का उपयोग करना ही पड़ेगा।
1: करना ही पड़ेगा।
0: आज के दौर में जो किसान हैं वो किस तरह से अपने आप को आधुनिक बनाएं ताकि उनके लिए कृषि एक फायदे का सौदा बने?
1: देखिए, हाँ, आज तरह के किसान जो हम एक्चुअली जो डाटा बता रहे हैं, जो जितनी मतलब किसान जैसे हर एक चीज में होता है क्या, फैमिली में टीचर बना या इंजीनियर बना,
0: जी जी
1: तो रिप्लेसमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है कुछ सालों से, जो यूथ आना चाहिए वो माइग्रेट होकर शहर तरफ जा रहे हैं
0: जी जी बिल्कुल
1: नौकरी के लिए जो वो माइग्रेशन हम सबसे पहले हम लोग को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि युवा क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो जो मुनाफा नहीं देखते हैं, तो
0: हाँ
1: उन लोग बोले अरे चलो ऐसे अच्छा नौकरी कर लेंगे।
0: हाँ
1: तो ये चीज जब तक युवा को ट्रेन नहीं किया जाए, और
0: हाँ
1: जैसे हम लोग यहाँ जैसे मेरे पे एफपीओ है, इस एफपीओ को वो भार ये दिया जाए कि
0: जी
1: युवा को ट्रेन करें, उनको टेक्नोलॉजी को समझाएं कैसे यूज करना है वो बताएं, तब जाके उसको ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, और उसके बाद मुनाफा देखने को मिल जाएगी और जो माइग्रेशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा।
0: आपका कहने का मतलब कि नई तकनीक और जो ट्रेनिंग और अच्छी तरह से प्रशिक्षण अगर किसी को मिले तो आज के
1: हाँ
0: युवा भी खेती किसानी के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं अच्छी तरह
1: हाँ
0: से।
1: और हाँ, और सबसे बड़ी बात है ये माइग्रेशन का, दो तीन चीज है। देखिए, सबसे पहला है आपका यहाँ मार्केट एक्सेस नहीं है,
0: अच्छा।
1: फार्मर को मार्केटिंग एक्सेस नहीं मिलते हैं। हालांकि हम लोग एफपीओ काम कर रहे हैं यहाँ, तो मार्केटिंग थोड़ा बहुत हो जाता है अभी।
0: हाँ लेकिन जो
1: हाँ
0: कंट्री वाइज
1: हाँ
0: जो
1: जो
0: मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा
1: हाँ
0: रहा है।
1: वो नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, यहाँ मिडिल मैन है,
0: जी
1: मोनोपोली बना के रखते हैं यहाँ,
0: हाँ मिडिलमैन से बचना है।
1: हाँ, तो ये पहले पहले मिडिल मैन को एलिमिनेट करना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल
1: तीसरा है आपका सप्लाई, इनपुट जो सप्लाई आते हैं वो ब्लैक में खाद हो गया या बहुत महंगी हो जाती है यहाँ आते आते मतलब,
0: अच्छा।
1: तो अगर वो चीज डायरेक्ट मिले फार्मर्स को या थोड़ा सस्ती मिले, तो उन लोग का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होगी। ताकि देखिए, मुनाफा सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से मुनाफा नहीं होगा,
0: अच्छा
1: आपको इन्वेस्टमेंट को भी घटाना पड़ेगा।
0: हाँ
1: हाँ, ये चीज, बस ये चीज कुछ बातों को ध्यान देके अगर हम लोग काम करते हैं,
0: हाँ
1: मतलब हम जितना एक्सपीरियंस के इस फील्ड में, ये चीज यहाँ कमी है, तो इस चीज को में अगर काम किया जाए या सरकार काम करती है। दूसरी, जैसे मान लीजिए प्रोसेसिंग यूनिट ही लगे,
0: अच्छा
1: हम लोग बोलते हैं कि टमाटर का हब है पटना, बोलते हैं ये हम लोग,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आज तक, हाँ आज तक देखिए, इंडस्ट्रियल सिटी के एकदम सामने रहते हुए भी पटना में आज तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा, कि
0: हाँ सही बात सही है।
1: टमाटर का अगर प्रोसेस करके मान लीजिए जैसे
0: ज्यादा
1: यहाँ,
0: ज्यादा उत्पादन
1: हाँ
0: हो तो प्रोसेसिंग सही तरीके से किया जा सके
1: हाँ
0: वहाँ पे।
1: हाँ जैसे यहाँ पे अगले साल नहीं, उससे पहले साल टमाटर फेंका गए खेत में बहुत
0: हाँ
1: सारे
0: हाँ
1: किसानों का,
0: हाँ हाँ
1: तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट रहता तो वो कुछ कम से कम कुछ तो देके जाता उन लोग का।
0: हाँ
1: पल्क बना दिए, केचप बना दिए, तो
0: जी,
1: ये आज तक नहीं हुआ।
0: मैं तो सरकार से और क्या क्या अपेक्षा आपको है?
1: सरकार से वही अपेक्षा कि मार्केटिंग एक्सेस मिल सके इन किसानों को, लोकल किसान को, और ये अगर एफपीओ के द्वारा होगा तो और बढ़िया होता है।
0: अच्छा
1: क्योंकि यहाँ का एफपीओ जो है वो अच्छी तरह से काम कर रही है अभी। एफपीओ से बहुत फायदा मिला है, जो इस सरकार के हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग की योजना के
0: जी
1: अंतर्गत बहुत सारे आते हैं,
0: हाँ
1: पशुपालन सहकारिता विभाग से भी आते हैं,
0: जी
1: तो ये सब उनके जरिए से ही मिलते हैं किसान को। यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम हो, तो मार्केटिंग एक्सेस मिले, प्रोसेसिंग यूनिट का अगर हो सके तो कम से कम स्टार्टिंग छोटा यूनिट से ही किया जाए।
0: हाँ
1: राइस मिल नहीं है, राइस मिल का अगर हो जाए तो
0: सीधा फायदा किसानों को मिल सकता है।
1: हाँ, सीधा फायदा किसान को मिल सकता है।
0: अंत में अपने क्षेत्र के किसानों को, या फिर यूं कहें कि युवा किसानों को, आप क्या
1: जी,
0: संदेश देना चाहेंगे?
1: युवा किसान को संदेश देना चाहेंगे कि इन फ्यूचर आप किसी भी सेक्टर में चल जाइए, सबसे ज्यादा डिमांडेड सेक्टर एग्रीकल्चर ही होगा। क्योंकि हम लोग हर एक चीज फैक्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन जो खेत में उपज होते हैं सब्जी फसल, ये सब फैक्ट्री में नहीं बना सकते।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: और आने वाले दिनों में इसकी किल्लत होने वाली है, और इस चीज का सेक्टर बढ़ने वाला है, और इसमें बिजनेस भी अच्छी खासी बन सकती है इन फ्यूचर जैक। तो युवाओं को यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में आए युवा, और इस सेक्टर को जैसे एक्सपोर्ट, ये सब इंटरनेशनल नेशनल ये सब में ले जाने की कोशिश किया जाए साथ में।
0: युधिष्ठिर जी, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे जो युवा किसान हैं और जो खेती किसानी से दूर भाग रहे हैं, वो आपकी बातों को सुनकर वापस खेती किसानी की ओर आएंगे और अपने देश को समृद्ध बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि में नई तकनीक का उपयोग और युवा किसान, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे युधिष्ठिर महतो।

किसान भाइयों, हम पशुपालन तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कई कोशिशों के बावजूद भी हमारे पालतू पशु सही प्रकार से दूध नहीं दे पाते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त साफ पानी और तनाव मुक्त वातावरण पर ध्यान दिया जाए। पशुओं के आहार में 20 से 25 किलो हरा चारा जरूर शामिल करें। यह ऊर्जा और विटामिन का मुख्य स्रोत है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और दूध में फैट बढ़ाने के लिए 50 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन जरूर दें। समय समय पर पशु चिकित्सकों की सलाह से पेट में कीड़े मारने की दवा दें, जिससे पशुओं में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो सके। पशुओं को आरामदेह और तनाव मुक्त वातावरण देने से बीमारियों का खतरा कम होता है और उनकी उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही अच्छी नस्ल और कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकों का उपयोग करके अगली पीढ़ी के पशुओं की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की जा सकती है।

कृषक मित्रों, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य मत्स्य प्रबंधन को सुव्यवस्थित और उन्नत बनाने, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने और हितधारकों के लिए मूल्यवान संसाधन उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है। यह प्लेटफॉर्म मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित डेटा, सूचना और सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। यदि आप भी मछली पालन करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए और तुरंत ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। अधिक जानकारी के लिए आप NFDP ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।

और अब आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। कल यानी कि 10 जून 2026 को वर्षा 0.5 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90% और न्यूनतम 56% रह सकती है। हवा की दिशा होगी उत्तर से पूर्व की ओर तथा रफ्तार रहेगी 11 किलोमीटर प्रति घंटे। और आइए अब आनंद लेते हैं ये कुर्माली लोकगीत का।

आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत, कलाकार थे निरोध बरन मन्ना। और अब आइए बातें करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी। किसानों के लिए नियमित योग अभ्यास हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ ही शारीरिक संतुलन और ऊर्जा में सुधार करने में बहुत मददगार है। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो शरीर की मुद्रा को ठीक करता है और पैरों तथा रीढ़ की हड्डियों में मजबूती लाता है। इसे एक पैर पर खड़े होकर किया जाता है, जो पैरों के संतुलन और कूल्हों की हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में फायदेमंद है। पीठ के बल लेटकर कूल्हों को ऊपर उठाने से पीठ, जांघों और कूल्हों की हड्डियां स्वस्थ रहती है। कृषि कार्यों के बाद पीठ और कमर दर्द से राहत पाने के लिए बैठकर धड़ को मोड़ना एक बेहतरीन स्ट्रेचिंग है। किसान भाइयों, योग के साथ साथ स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना बहुत जरूरी है। और अब चलते चलते आपको बता दें कि जलवायु अनुकूल ड्रिप सिंचाई प्रणाली पौधों की जड़ों तथा सीधे पानी पहुंचाने की अत्यधिक कुशल प्रणाली को स्वचालन IoT सेंसर और जलवायु डेटा के साथ एकीकृत करती है। यह पारंपरिक विधियों की तुलना में पानी की बर्बादी को 30% से 50% तक कम करती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तथा उर्वरक अपव्यय को भी काफी हद तक घटाती है। कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। अपने दोस्त राजेश को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

तो आप सुन रहे थे हमारी दुनिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उससे पहले कुछ संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची के अंदर से शाम के 7 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोरहाबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर-18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के अन्य मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने भी रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
2: भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। उन लोगों नतमस्तक करते हुए अपने पूरी सद्भावना इनके प्रति अर्पित करता।
1: वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 125 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी और अन्य वर्गों के बीच भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाना बड़ी बात है।
3: लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी, जलापूर्ति योजनाओं के नियमित मॉनिटरिंग तथा जल सहियाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी भूमिका सशक्त बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने तथा अनुपयोगी चापाकलों को रिचार्ज पिट के रूप में उपयोग करने के निर्देश भी दिए। झारखंड में पहली बार 16 से 18 जून तक कृषि व्यापार मेला का आयोजन राजधानी के मोरहाबादी मैदान में होने जा रहा है। राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह मेला इसलिए खास है क्योंकि इस मेले के जरिए किसानों, कृषि उत्पादों के व्यापारियों और देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश हो रही है।
4: ये कार्यक्रम इसीलिए भी हमारे राज्य के किसानों के लिए विशेष है क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल किसान नहीं, मगर किसान के साथ साथ व्यापारी, साथ ही साथ वैज्ञानिक गण, इसके साथ ही उद्यमी गण, तमाम लोगों को एक ही मंच में लाने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
1: झारखंड हाई कोर्ट में आज वर्ष 2018 से लापता गुमला की 6 वर्षीय बच्ची से जुड़े मामले में दायर हेबस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें गुमला के एसपी और एसडीपीओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की आरोपी महिला के नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दिया गया है और सक्षम अदालत से अनुमति मांगी जा रही है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए मामले की प्रगति पर गंभीरता जताई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। झारखंड सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 2% की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब 58% के बजाय 60% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। राज्यसभा चुनाव मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में पार्टी किसी भी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग पर विश्वास नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया।
5: कांग्रेस पार्टी सारी मर्यादाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पर वो बोलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, 16 विधायक रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक रहते हुए, चूंकि हमारे साथ संख्या बल नहीं है, हम जोर तोर की राजनीति नहीं करते, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं।
1: पूर्वी सिंहभूम जिले में उत्पादित रसीले आम अब देश की सीमाएं पार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से जिले के करीब 1.5 टन आमों की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप आज उपायुक्त राजीव रंजन ने लंदन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
6: जमशेदपुर को एक नया बाजार मिल रहा है जो कि विदेश यूके में अवस्थित है, और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और भारतीय आम का स्वाद जो है वो विदेशों में पहुंचेगा। 1.5 टन जा रहा है फर्स्ट लॉट में, दूसरे देशों में भी भेजने का प्रयास चल रहा है, जैसे दुबई वगैरह भी भेजने का ऐसा चल रहा है।
1: खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ की ओर से अंडर-18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
7: खूंटी जिले के कुछ बच्चे और बच्चियां हैं, एट द सेम टाइम हमारे राज्य के भी बहुत बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने मेंस में हमारा गोल्ड और वुमेन्स में हमारे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ऐसे बच्चे भविष्य में भी हमारे राज्य, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक हॉकी से संबंधित है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम वगैरह की, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है। आने वाले टाइम में और भी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होगा, उसको फुलफिल करके उनको बेहतरीन माहौल और सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
1: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और राज्य के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दिया निर्देश। रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से लगेगा कृषि व्यापार मेला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, एक मंच पर होंगे किसान, व्यापारी और कृषि वैज्ञानिक। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की हुई वृद्धि। और खूंटी में जिला प्रशासन और हॉकी ओलंपिक संघ ने अंडर 18 एशिया कप के गोल्ड और कांस्य पदक विजेता बालक बालिका टीम को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: श्रोताओं वही सुनते हैं जिले में आजकल।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन द्वारा ग्रीन बोकारो क्लीन बोकारो अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया है इस अभियान के तहत अगले एक माह में 10 से 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।
2: यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसमें ही पर्यावरण है, इसलिए हम अगर कभी पर्यावरण से विमुख होंगे तो ये स्थिति झारखंड की चेतना से अलग होना हो। जैसे हम पौधारोपण करते हैं, मेरा ये मानना है कि हम एक पौधा लगाते हैं और पौधारोपण एक कार्यक्रम हो सकता है, जैसे अभी चल रहे ग्रीन बोकारो क्लीन बोकारो और ग्रीन झारखंड के कांसेप्ट मूल मंत्र पे हम सब काम करें और आने वाले एक महीने डेढ़ महीने के अंदर हम सब कम से कम 10 से 15 लाख पेड़ पूरे बोकारो में लगाएंगे, ये हम सब संकल्प लें और काम करें।
1: पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बताया है एक सप्ताह के अंदर जिले के सभी थानों और पुलिस कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर लिया जाएगा।
3: आज पुलिस लाइन बोकारो में एक संयुक्त प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें वृक्षारोपण सांकेतिक रूप से किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने समय जितने भी पुलिस के इंस्टीट्यूशन है, जैसे पुलिस केंद्र है, एसपी ऑफिस है और जितने पुलिस थाने हैं, जो पिकेट्स है, सीआरपीएफ कैंप्स है, सभी में हम लोगों ने जगह चिन्हित की है ताकि आने वाली बारिश में सारे पेड़ हम लोगों के लग जाए।
1: उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बेहतर पुलिसिंग का निर्देश दिया है।
4: बोकारो का ही मैटर था जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेके हमारे डीजीपी मैम तक को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ऐसी गलतियां हमारे स्तर पे नहीं हो या थाना के स्तर पर नहीं हो, प्रयास किया जा रहा है और उस दिशा में भी उस बिंदु पे सारे पदाधिकारियों के साथ बात की है कि हाईकोर्ट के जो मामले होते हैं उनको हम कैसे त्वरित कार्रवाई करके दूर कर सकते हैं या उनका कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी सारे पदाधिकारियों को जानकारी दी है। जस्ट मेरे आने से पहले वो लोगों को बता रहे थे, तो ये एक अच्छा पहल है कि जो छोटी छोटी गलतियां हमारे पार्ट पे होती हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम लोग ना दोहराएं।
1: उपायुक्त अजय नाथ झा ने आग से सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित विभाग को जिले के सभी होटल, हॉस्पिटल और ऊंची बिल्डिंग की जांच का निर्देश दिया है।
5: पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा, दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है, इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत सामान रख देते हैं। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जांच टीम में रहेंगे, तो उनको कहा है 15 दिनों का समय दिया है, 15 दिन के बाद एक एग्जॉस्टिव बैठक हो। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा हमने हॉस्पिटल्स और सबके जांच के लिए आदेश किया था कि फायर की स्थिति का जांच करें, वो रिपोर्ट अभी मेरे पास अभी आया नहीं है, इस पर को भी लेकर 15 दिन के अंदर हम इस पर बैठक करने जा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो भी लोग चला रहे हैं अगर फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है या परमिशन के बियॉन्ड चला रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: तापमान के उतार चढ़ाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिले वासियों को मानसून की बेसब्री से इंतजार है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आलोक।

0: Alo.
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शशांक शेखर।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विदु चंदन ट्रस्ट और जल ज्योति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड के बड़ा बांकी पंचायत अधीन सिलपहाड़ी गाँव में विगत शनिवार 6 जून को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे खास तौर पर SPCID एहतिशाम वकारिब और बड़ा बांकी पंचायत के मुखिया राकेश कुमार मुर्मू की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों समेत आयोजित संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य तथा अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गांव के विद्यालय परिसर के समीप एक भूभाग में पौधारोपण भी किया गया।
3: नींबू है ना?
2: जिसकी शुरुआत अतिथियों द्वारा की गई। कार्यक्रम स्थल में संस्था के मार्गदर्शन में बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें फल फूल अनाज बीज आदि का संग्रह कर उनके संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके अलावा कुछ कलाकृतियां भी प्राकृतिक चीजों को लेकर बनाई गई थी।
4: जी महाराज सभी को, मेरा नाम सरस्वती माता है। मैंने ये दोनों स्टॉल तैयार किया है। हम लोग के समर कैंप हुआ तो यहाँ
5: कहाँ पे कैंप हुआ?
4: ये राजमा का भी थे जिसे खाया जाता है दाल बना के। ये भेला है जो मतलब घाव हुआ होता है तो दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। कुसुम का बीज है, इससे तेल भी बनाया जाता है। ये बादाम है, आप सबको पता ही है, जो खाया जाता है। ये धान है जिससे चावल बनाया जाता है। ये आमड़ा है, ये संथाल लोग के घर में ज्यादातर मिलता है।
5: पहले खाते थे।
4: ये कोचड़ा है जिससे तेल भी बनाया जाता है। सब्जी पीठा और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। ये अरहर है जो तुर भी बोला जाता है, ये दाल बनाने काम में आता है। ये आम का बीज है, ये काजू है।
5: काजू होता है
4: और ये मिर्च का बीज है, ये इमली का बीज है, ये हरदकी है जो कि बहुत कामयाब है।
2: कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे वहां उपस्थित तमाम बच्चों ग्रामीणों और अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर एहतिशाम वकारिब ने अपने संबोधन में कहा,
6: कर रहा हूँ मैं भी अक्सर यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ पे बताया गया कि बच्चों के लिए समर कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उनको नेचर के बारे में बताया गया। पर्यावरण दिवस जो हमें खास तौर पे याद दिलाता है।

0: नेचर कितना इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, और पर्यावरण से ही जो मानव जाति है या फिर जितने भी पशु पंछी है, बर्ड्स है, सबको पर्यावरण की आवश्यकता है। और ये पूरा इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट निर्भर है। पशु भी मानव पे निर्भर है, मानव पशु पे निर्भर है, पेड़ पौधे भी मानव पे निर्भर है, ना मानव भी पेड़ पौधे। लेकिन ये किसी भी तरह मतलब काइंड ऑफ के ऐसा हो रहा है कि इसमें थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है और नेचर को, पर्यावरण को लोग महत्व कम दे रहे हैं। तो ये दिवस हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण के बिना एक्चुअली मानव जाति ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो बार बार हमें ये याद दिलाने की चीज़ है, बार बार इनका अमल करने की चीज़ है। और पर्यावरण दिवस किसी भी खास तौर पर मनाया जाता है, और जैसा कि मुखिया जी ने बताया और बाकी जो फादर जी ने बताया कि कहते हैं हम लोग को पर्यावरण में पेड़ लगाना चाहिए, कम से कम बर्थडे के दिन या कोई भी ऐसा आपको महत्वपूर्ण अवसर लगे तो एक या दो पेड़ अवश्य लगाएं, और उसको बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो पेड़ तो लगते हैं पर वो आहिस्ते आहिस्ते वेदर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसका कोई वो नहीं रहता है, डेटाबेस नहीं रहता है कि कितने पेड़ लगे हैं। तो हम लोग को पर्यावरण को जहाँ भी मौका लगे, अपने बर्थडे पे या कोई आपको खुशी का दिन है, अच्छा रिजल्ट आया या आपके लिए कोई महत्वपूर्ण दिन है, तो पेड़ को जरूर संरक्षण करें। पेड़ को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेड़ लगाना है। पेड़ कोई मर रहा है तो उसको मरहम करके उसको ठीक कर देना भी एक पर्यावरण का बचाव का है। पर्यावरण में पेड़ पौधा नहीं, जलाशय भी आता है, नदी नाले भी आते हैं, इन सबको भी बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक कूड़ा करकट ये सब जहाँ तहाँ नदी में और नाले में इन सब में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे उसका जो रिवर का सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय होता है और वो फिर आगे जाके वो उसको नदियाँ मरने लगती हैं। तो ये खासतौर पे जो फोटोग्राफ यहाँ पे भी दिखाया गया है, और काफ़ी विवेकानंद ट्रस्ट ने काफ़ी इस पर मेहनत करके अच्छे अच्छे फोटो एकत्रित किया, जो बच्चियाँ थी उन्होंने अच्छा प्रोजेक्ट किया, जैसे कि नेचर से निकाला कैसे पेड़ पौधे को, हम इतना पेड़ पौधा हमारे सब अगल बगल दिखता है लेकिन आई कैन से कि 50% लोग बता नहीं पाएंगे उसका नाम क्या है। तो बच्चों को सिखाया गया पहचानने के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। हमें 10 तरह की कार के ब्रांड्स पता है कि ये कार ये होती है, लेकिन नेचर जो बगल में अमरूद का पेड़ है या डूमर के पेड़ है या सजना के पेड़, उसके बारे में बच्चों को नहीं पता। तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा सहयोग है, क्योंकि नेचर ही अल्टीम फाइनली हम लोग के काम आएगा।
1: बड़ा बांकी पंचायत के मुखिया राकेश मुर्मू ने कहा,
2: पर्यावरण दिवस कल अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मनाए हैं, उसी का पलच में आज हम एक दिन के बाद हम लोग आज मना रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग शुरुआत किए हैं पौधा लगा के। मेरा मानना है कि पौधा तो लगाते हैं, उसको कैसे जीवित करना है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि हम 5000 पेड़ लगा दिए और छोड़ दिए, वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। उसको कैसे देखभाल करना है, उसको कैसे बड़ा करना है, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ जितना भी बच्चे आए हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अपना जन्मदिन हो, बड़ा अपना सालगिरह मना रहे हैं, यही सोच रखना अपना जन्मदिन में फलदार पेड़ कम से कम 3 लगाना है।
1: पंचायत समिति के सदस्य मनोज महतो ने अपने संबोधन में कहा,
3: मुखिया जी जैसे बोले कि पेड़ को बचाना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें पेड़ के संरक्षण में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झारखंड की भूमि है, इस मिट्टी में इतने रूट्स हैं और इतने मेडिसिनल प्लांट्स के रूट्स हैं जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जिसको किसी भी तरह की जरूरत है ना, हम पानी देना है ना कुछ देना, वो अपने आप ही बच जाते हैं। जो हम लोग लगाते हैं उस पेड़ को बचाने के लिए उसको देखभाल करना पड़ता है, बट जो अपने नेचुरली निकलता है इस, और इस जमीन में बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे साल हमारे यहाँ बगल में बड़ा बंकी के जंगल है, कम से कम 200 हेक्टेयर का वन भूमि है, जिसमें इतने सारे प्लांट्स है। अगर कोई उस टाइप का रिसर्चर आए तो उसमें मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट मिलेगा, और जिसको हम लोगों को लाने की जरूरत नहीं, उसको बचाना है।
4: और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जंगल सबसे ज्यादा नष्ट होता है आग के कारण। हर साल पहाड़ 7 दिन 1 सप्ताह 15 दिन कंटिन्यू जलता है, कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि पब्लिक जाकर के उसको बुता भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी आग भयानक हो चुकी होती है। और बड़ा बांकी के जंगल में हर साल 7-10 दिन 15 दिन में लग रहा पेड़ पौधे जितने आ रहे हैं निकल रहे हैं, अगर 1-2 साल किसी तरह अगर आग के ऊपर काबू पाया जाए तो पेड़ अपने आप ही जंगल बन जाएगा।
1: जल ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक सुबोध गौड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा,
5: प्रयास करते हैं कि किस तरह हम लोग भी इस झारखंड भूमि में

0: जो हम लोग एक जंगल के ये में जानते हैं, पहचान हमारे की झारखंड का पहचान एक जंगल के रूप में है कि यहाँ पर जल जंगल जमीन के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जन्मदिन तो हम लोग मनाते ही हैं बच्चों, तो ये नहीं देखना कि पर्यावरण दिवस पर ही हम लोग सिरमाप लेंगे, एक पेड़ लगाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे हमारे आंगन में एक दो पेड़ जितने हो सके उसको लगा के उसको देखभाल करके किस तरह से बढ़े वो कोशिश करेंगे। मैंने आज देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रूप से दिखाए कि विज्ञान के जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि किस तरह से कौन फल कैसे क्या काम आएगा, जड़ी बूटी जो भी है, इतनी जानकारी मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में कम संसाधनों में भी ये व्यवस्था जो विधु चंदन ट्रस्ट द्वारा ये व्यवस्था की गई है, वही जानकारी दी गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम को कि आपके माध्यम से बच्चे लोग जागरूक हो रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं।
1: इस अवसर पर लॉयला स्कूल टेलको के फादर एलेक्स ने कहा,
2: आप सबको जोहार। हम लोग सबको हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली में आपको भी अच्छा लगता होगा ना, सबको अच्छा लगता है, छोटे लोग बड़े लोग ऑफिसर लोग हम लोग सब मिलके एक ही मुद्दे से यहाँ आए हैं। क्या मुद्दा है? पर्यावरण। पर्यावरण को हमको बचाना है। पर्यावरण क्या है? पेड़ पौधा जो जंगल है ना, वो सबको नुकसान नहीं करना है लेकिन बढ़ावा देना है। जितना वो हरियाली हमारे बीच में बढ़ता है उतना ही हमारा जिंदगी भी बढ़ेगा, जितना उसका नुकसान होता है हमारा भी नुकसान होगा। साधारणतः पर्यावरण हम लोग प्रकृति के बारे में, जंगल के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं बच्चों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, ये भी पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़ लगते हैं, लगाते हैं उसको बड़ा करते हैं, हम लोग बच्चों को भी बड़ा करना है ना, पालते हैं पोसते हैं और शिक्षा भी देते हैं, इसी में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो जितना भी हमारे साथी इधर आए हैं, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि हमारे मेहनत बेकार नहीं होता है, इतने लोग हमारे साथ हैं और हम सब चाहते हैं जैसे हम लोग प्रकृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वैसे ही हमारे बच्चों के जिंदगी को भी आगे बढ़ाएंगे।
1: सामाजिक कार्यकर्ता जौहर भाई ने भी इस मौके पर कहा,
3: सबसे पहले सबको जोहर। हम लोग बेस्ट संस्था के तरफ से दो कार्यक्रम कराते हैं हर साल, एक होता है एसे राइटिंग कंपटीशन। दो साल हमको लगता है कि इस स्कूल का बच्चा जो है फर्स्ट ईयर एसे कंपटीशन। पिछले साल भी हम लोगों ने बेस्ट के तरफ से यहाँ पे जमशेदपुर और सरायकेला मिला के करीब 2500 हम लोग पौधा बांटे थे, और जो आयोजक है उनसे मेरा एक गुजारिश है कि जब वो नेक्स्ट टाइम वो करें प्रोग्राम, पिछले साल का कम से कम है ना खाता जाए नहीं बनाने का है, मगर एक चीज है उन पौधा जिंदा है कितना लगा है तो उससे एक पता चलता है कि आप कितना मेहनत किए हैं और वो मतलब उसका रंग ला रहा है, आपको लगे कि हाँ एक पौधा हम लगाए हैं तो इतना बड़ा हुआ। और यहाँ जो है और जो देने वाला है उसको भी खुशी होता है कि जहाँ हम दिए हैं वो समाज के लिए काम आ रहा है।
1: कक्षा 10वीं की छात्रा सरस्वती महतो ने कहा,
4: हम लोग चंदन ट्रस्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम लोग 8 दिनों से समर कैंप हुआ जिसमें हम लोग कई सारी गतिविधियाँ हमने सीखी, जैसे जिनकी बाबा सब होते हैं उनसे हमारा अंधविश्वास हुआ, फिर भूत प्रेत वो सब, फिर डर के बारे में बताया गया।
5: और आज क्या क्या हुआ, क्या समझा?
4: पर्यावरण दिवस विश्व का पर्यावरण दिवस है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली शुरुआत की गई थी 1973 में, और हमें जरूर से जरूर पेड़ लगाना चाहिए चाहे अपने, और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, और ये वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें उतना गंदगी नहीं फैलाना चाहिए।
5: आप कौन क्लास में पढ़ती हो?
1: अंत में विधु चंदन ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवानी माडी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन आरंभ युवा मंच जमशेदपुर के अंकुर शाश्वत ने किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विधु चंदन ट्रस्ट और जल ज्योति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोलबुरी सह जुगसलाई प्रखंड के बड़ाबांकी पंचायत के सील पहाड़ी गाँव में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर पिछले एक सप्ताह से चला आ रहा साइंस समर कैंप का भी समापन किया गया। इसी पर आधारित ये थी हमारी विशेष रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुतकर्ता राकेश रमण, ध्वनि अंकन एवं वाचन स्वर शशांक शेखर का। जोहार।
5: आलो।
6: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आलोक। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रेम रोग फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें हैं अनवर और सुधा मल्होत्रा की।

गुलामी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत हमने लिया है फिल्म सड़क से, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की है, बोल हैं समीर के, धुन बनाई है भूषण दुआ ने।

शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन नुसरत फतेह अली खान का। सुखविंदर सिंह की आवाज़ में लीजिए सुनिए फिल्म कच्चे धागे का ये गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का गीत। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 144454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात पर और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग का। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
10: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
9: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer, and cyber strength.
11: The amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer, manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy continuously is in sync with what are actually the prime national goals of the moment.
9: Dr. Jayashankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Dr. Jayashankar also emphasized India's balanced engagement across key regions amid growing geopolitical tensions. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Emir of

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
2: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
1: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
2: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहाँ पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है, वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप। और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहने हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
2: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। फिर सातवां है जो उनकी मुख्य जांचें होती है, जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
2: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती है, उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं, वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहने हैं और आशा बहने प्रेगनेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल।
2: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
2: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब 5th ANC, पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 + 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त, सारा हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो?
2: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
1: जी,
2: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 80

0: हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटरनल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले दो दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइव बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गाँव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
0: आशा वर्कर्स हैं, ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। क्या बहनों को पता है कि उनके गाँव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है
1: जी।
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहां से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनता है
1: जी।
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है, तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Manthan.

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी।

0: हेलो, आपकी फरमाइश
1: गुड इवनिंग।
0: जी। गुड इवनिंग
1: कोई मंगलवार को अक्षय का बर्थडे का कोई गीत सुना दीजिएगा।
0: जरूर, बर्थडे वाला कोई गाना सुनाएंगे, ये तो तय है। लेकिन सबसे पहले हम आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे।
1: मेरा नाम ममता जी, जुगसलाई।
0: अच्छा, कहाँ से आपने हमें फोन किया है? जुगसलाई के रुंगटा जी, बर्थडे वाला सॉन्ग आप किस लिए सुनना चाहते हैं? किसी का बर्थडे है क्या उस दिन?
1: और दिन जो फोन किया आपको उसी का ही है।
0: यानी आपका बर्थडे है, तो चलिए आपको ढेर सारी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।
0: और इसी शुभकामना के साथ लीजिए सुनवाते हैं आपको ये गाना फिल्म फर्ज से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: आपकी फरमाइश। धन्यवाद दीदी। मैं गंगाधर सावनकर
0: गंगाधर भाई, कहाँ से आपने हमें फोन किया है?
1: कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से दीदी।
0: महाराष्ट्र के आप हमारे श्रोता हैं, इतनी दूर से हमें फोन कर रहे हैं। क्या मैं अपने भाई से ये जान सकती हूँ कि दूर दराज बैठे हमारे श्रोता कैसे आकाशवाणी जमशेदपुर को सुन पाते हैं?
1: मैडम ये दीदी बोले आप आए ना, मोबाइल ऐप आने से पूरे देश के कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: जी हाँ, सही कहा। ये जो ऑन एआईआर ऐप आया है, इसकी वजह से प्रत्येक रेडियो स्टेशन को, चाहे विश्व में आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी रेडियो को सुनना आसान हो गया है।
1: बिल्कुल
0: अब
1: दीदी।
0: रेडियो सेट को ट्यून करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: नहीं, हर जगह का पूरे
0: गंगाधर
1: देश
0: भाई,
1: का सुन
0: क्या
1: सकते।
0: करते हैं आप?
1: मैं एक रिटायरमेंट हूँ, मंडी के ऑफिस में काम करता था
0: अच्छा
1: और साल हो गया रिटायर होके। मैं
0: अच्छा
1: रिटायरमेंट में भी रेडियो सुनता था, मगर कभी वक्त मिला तो सुनता था, मगर अभी रिटायर के बाद तो रेडियो साथी बन गया।
0: जी हाँ, और रेडियो से अच्छा साथी कोई हो भी नहीं सकता है।
1: बिल्कुल दीदी, क्योंकि टीवी देखता नहीं, मैं रेडियो
0: अच्छा
1: सुनता हूँ, और न्यूज हो, किसान वाणी हो, कुछ डॉक्टर का प्रोग्राम हो।
0: जी हाँ,
1: हाँ
0: यानी आप सभी तरह के प्रोग्राम का आनंद लेते हैं रेडियो पर।
1: बिल्कुल दीदी।
0: बहुत खुशी हो रही है आपसे ये जानकर कि आप हमारे आकाशवाणी को इतनी शिद्दत से आप सुनते हैं।
1: जी दीदी, मैं मेरे को भी बहुत खुशी हो रही कि आपके ये जमशेदपुर में पहली बार फोन लगा।
0: अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी जमशेदपुर में। आप हमारे परिवार से जुड़ गए, आकाशवाणी परिवार का हिस्सा बन गए, आकाशवाणी जमशेदपुर का हिस्सा बन गए आप।
1: जी।
0: अब तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपसे हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी।
1: जी।
0: तो भाई, अब बताइए कि मुलाकातों का दौर आगे बढ़े इससे पहले इस बार आपने जो हमें कॉल किया है, किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: दीदी रोटी कपड़ा और मकान।
0: जी हाँ, इस फिल्म से कौन सा गीत सुनना है?
1: मैं ना भूलूंगा। जी
0: बहुत सुंदर गाना है ये। तो चलिए
1: जी
0: हम आप तक लेकर आते हैं फिल्म
1: जी
0: रोटी
1: जी
0: कपड़ा और
1: थोड़ा नाम
0: मकान का
1: लेना
0: ये
1: चाहता
0: गीत।
1: हूँ
0: हाँ जरूर लीजिए।
1: हमारे, खास करके गौतम जी रायबोले जी है, तुकाराम जाधव जी है, भगवान सिंह जी है, और दिलीप पाउजा है, सुनील झा है, उदयलाल टेलर जी है,
0: अच्छा
1: नीरज राबरी है, सुरेश यादव पैटन के है, और राजेंद्र गंगवार जी है। सभी दोस्तों को सुनाए।
0: चलिए हम आपके तमाम दोस्तों के साथ आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो,
0: हेलो
1: नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भाई?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिवान, जिला विदिशा।
0: मध्य प्रदेश, जिला विदिशा के हारून भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र में। क्या करते हैं दोस्त आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी भारत जो है कृषि प्रधान देश है और आप हमारे अन्नदाता हैं। हमारे तक अन्न पहुंचाने का काम जो आप करते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम आपका सादर वंदन करते हैं।
1: जी, धन्यवाद।
0: हारून भाई, अभी तो गर्मी का मौसम है, तो अभी खेतों पे तो काम नहीं हो रहा होगा।
1: जी, लेकिन अभी तो घर पर हैं, आराम फरमा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो घर पर आराम फरमाते हुए आप घर के बाकी कामों को कर रहे हैं।
1: जी, बस रेडियो का मनोरंजन हो जाता है, रेडियो का सुनते हैं, टाइम पास हो जाता है, फोन लगा लेते हैं, आपसे बातचीत हो जाती है।
0: अच्छा, और रेडियो से आप यूं ही जुड़े हुए हैं?
1: जी, रेडियो से जुड़े हुए हैं और अपना साथ मनोरंजन भी होता रहता है, टाइम पास भी होता रहता है, कुछ अपना काम काज भी चलता रहता है।
0: जी हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा गर्मी है तो अच्छा है कि आप घर पर रहें, रेडियो सुने, समय भी गुजर जाएगा और साथ ही ज्ञानवर्धन भी होगा। सिर्फ ज्ञानवर्धन ही नहीं, इसके साथ साथ हमारा मनोरंजन भी होता है।
1: जी, मनोरंजन भी हो जाता है।
0: जी हाँ, तो गीत संगीत सुनना आपको बेहद अच्छा लगता है क्या?
1: जी,
0: तो बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: फिल्म है तेरे नाम का सुना देना, आने के बोल है तुमसे मिलना बात करना।
0: बहुत सुंदर गीत है ये, बहुत मीठा गीत है। तो चलिए, हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी फरमाइश पे फिल्म तेरे नाम का ये गाना।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं भाई?
1: आशुतोष मिश्रा वर्मा में से इस्लाम।
0: आशुतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं?
1: ठीक है मैम।
0: और दोस्त क्या करते हैं आप?
1: अभी तो घर में मैम बीसी ड्यूटी है।
0: अच्छा,
1: कंपनी में काम करते हैं।
0: अच्छा, तो अभी तक आप ड्यूटी नहीं गए हैं, यानी ड्यूटी जाने की अभी तैयारियां चल रही हैं?
1: हाँ, 2 से 10 है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है दोस्त?
1: वाइफ है, 2 बच्चा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं बच्चे?
1: आयुष, लड़का का नाम आयुष है।
0: अच्छा,
1: और लड़की का नाम वेदिका है।
0: वाह, बहुत खूबसूरत नाम आपने चुनकर रखा है बच्चों का। आशुतोष भाई।
1: हाँ मैम।
0: जी हाँ, इस प्रोग्राम में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुना दीजिए। याद नहीं आ रहा है, ये सुनील शेट्टी का फिल्म है धड़कन, धड़कन का गाना बढ़िया वाला सुना दीजिए।
0: तो चलिए भाई, हम आपके परिवार के साथ आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना फिल्म धड़कन से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, प्रणाम मैडम।
0: जी प्रणाम, कौन बोल रहे हैं भाई?
1: सुनील कुमार महाकुड़, ग्राम पोड़ाडीहा।
0: ग्राम पोड़ाडीहा के सुनील कुमार महाकुड़ जी, स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं दोस्त?
1: ठीक है मैडम।
0: और सुनील भाई, ये बताइए कि ये आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरा परिवार में मेरा माँ है, मेरा वाइफ है, मेरा दो बच्चा है।
0: अच्छा,
1: और
0: वाह, बड़ी खुशी हो रही है कि भरा पूरा परिवार है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि माता जी की छत्र छाया में आप अभी भी हैं। सुनील भाई, बच्चे क्या करते हैं?
1: 79 एज हो रहा है माता।
0: तो माता जी 79 ईयर्स की हो चुकी हैं।
1: जी जी, सुना दे मुस्कान फिल्म का, सुना दीजिए
0: फिल्म मुस्कान का गीत तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
1: बच्चा लोग का नाम ले लेते हैं मैडम, रुपेश कुमार महाकुड़, तपेश कुमार महाकुड़।
0: जी हाँ, रुपेश कुमार महाकुड़ और तपेश कुमार महाकुड़ के साथ आज हम आपकी पत्नी का भी नाम जानना चाहते हैं कि उनका नाम क्या है।
1: स्नेहलता।
0: स्नेहलता, तो चलिए रुपेश कुमार महाकुड़, तपेश कुमार महाकुड़ और स्नेहलता जी के साथ सुनवाते हैं हम अपने सुनील कुमार महाकुड़ भाई को उनके पसंद का ये गाना फिल्म मुस्कान से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: आपका नेम है श्वेता धीरज जबारी, पाटन गुजरात से।
0: पाटन के धीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं दोस्त?
1: हम अच्छे हैं, आप लोग सभी अच्छे होंगे, यही हम आपको और जो 90 साल की प्रसारण यात्रा है उसमें हम जमशेदपुर से जुड़े सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा।
0: जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आकाशवाणी 90 साल की उपलब्धि में एक और रेडियो केंद्र से आपके जुड़ने के लिए एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धीरज भाई, 90 साल आकाशवाणी को हो चुका है, आप इतने वर्षों से रेडियो सुन रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आपने कभी लेखा जोखा रखा है कि कितने स्टेशन को आप सुनते चले आ रहे हैं?
1: एप्लीकेशन जब से आई ऑन एयर तब से मैं बहुत स्टेशनों से जुड़ा हूँ। मान लो कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, कई स्टेशन समय रूप में सबके लिए समय देता हूँ फोन इन के जरिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता।
0: बहुत बढ़िया। और इतने स्टेशन से जुड़कर आपको भी अच्छा लगता होगा और हमें तो बेहद खुशी है कि इतने दूर के श्रोता हमें सुन रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में भाग भी ले रहे हैं, हिस्सा भी बन रहे हैं हमारे प्रोग्राम का।
1: जी जी, यार अच्छा लगता है, आपकी जो होती है बहुत अच्छी होती है और इसमें कई जानकारी हमको मिलती है विविध प्रदेशों की, यानी भौगोलिक स्थिति, धार्मिक, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है दीदी श्रोताओं के जरिए, आप और श्रोताओं की बातचीत के जरिए।
0: जी हाँ, सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया है कि पाटन में भी बहुत सारी चीजें हैं, पाटन की कलाकृति के बारे में भी आपने बातचीत की थी, तो कुछ और भी जानकारी आप गुजरात के बारे देना चाहेंगे?
1: दीदी, हमारी जो पाटन शहर है वो सरस्वती नदी बोलते है, उसको कुंवारिका भी बोलते है, तो वो नदी दरिया में नहीं जाती तो उसको इसीलिए कुंवारिका बोलते है।
0: अच्छा।
1: हाँ दीदी, तो वो सरस्वती के तट पर ही पाटन बसा है, जैसे साबरमती के तट पर अहमदाबाद बसा है।
0: हाँ।
1: तो ये क्षेत्र है और वहाँ मेले भी भराते हैं, वहाँ और कई जगह है जो देखने वाली, मोटेरा का सूर्य मंदिर भी है, चित्तौड़ का रुद्रमाल भी है, यानी कभी वडनगर के जो माननीय का जन्मभूमि है वहाँ चित्तौड़ है, ऐतिहासिक, बहुत ही अच्छे पाटन और मेहसाणा के आजू बाजू देखने लायक स्थल है। अभी अगर गुजरात का आने का अवसर मिले तो सभी जगह पर अगर समय हो तो जाना बेहद अच्छा लगेगा।
0: जी हाँ, जरूर हम ऐसा चाहेंगे कि कभी गुजरात जाने का मौका मिला तो जरूर इन तमाम चीजों के दर्शन कर सकें और स्वयं को सौभाग्यशाली समझ सकें। धीरज भाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे होती है, बहुत सारी जानकारियाँ आप देते हैं, आप यूं ही हमारे प्रोग्राम में बने रहें, लेकिन फिलहाल आपसे आपकी फरमाइश जानना चाहते हैं।
1: आप ऐसे न थे मेरी जिंदगी में शामिल, एम लता की आवाज में अगर गाना हो तो अच्छा रहेगा।
0: जरूर, चलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गाना, निदा फाजली की रचना है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन, आवाज हेमलता की है।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: आदर साथियों को प्रणाम और आपको नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार मेरे नन्हे दोस्त। अब आपका परिचय जानना चाहते हैं।
1: मैम मैं कुमारवीर सिंह।
0: कुमारवीर सिंह जी, फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं दोस्त?
1: मैम मैं तो बहुत बढ़िया हूँ।
0: और छुट्टियों को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं, है ना?
1: यस मैम, मैं छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं तो बहुत सारे पौधे यानी प्लांट्स भी लगा रहा हूँ।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत बड़ी बात सीख ली है। अगर अपनी धरा को हमें बचाना है तो पेड़ लगाना अति आवश्यक है।
1: यस मैम, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। अब हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी।
0: जी हाँ, और जो वातावरण में यानी प्रदूषण फैल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, उसे वो अपने आप में अवशोषित भी कर लेगा, तो इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, है ना?
1: यस मैम, प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जिस तरह से हम अपनी रक्षा अपने करते हैं, वैसे ही हमें प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए।
1: यस मैम।
0: तो
1: मैम, मैंने बुक में पढ़ा था
0: हाँ,
1: कि अगर प्रकृति हमें कुछ देती है तो हमें भी प्रकृति का मदद करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही पढ़ा था। और आप शायद इसी वजह से प्रेरित होकर पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं।
1: यस मैम,
0: बहुत अच्छी बात है। तो आप भी पौधे लगाइए और साथ ही साथ अपने सारे साथियों को भी इस काम की ओर प्रेरित कीजिए कि वो भी छोटे छोटे पौधे लगाएं और उसका संरक्षण करें ताकि वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन सके।
1: यस मैम।
0: वीर सिंह जी, इतनी अच्छी बातें आपके साथ हमारी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये बातें करते हुए। और इससे हमारे तमाम श्रोताओं को एक प्रेरणा भी मिल रही है कि बरसात का दिन आ रहा है, प्रदूषण से अगर बचना है तो पेड़ लगाना जरूरी है।
1: यस मैम, अगर हमें गर्मी को भगाना तो पेड़ लगाना तो जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाएगी ना, तो फिर से एक बार धरती हरी भरी हो जाएगी।
1: यस मैम।
0: अब बताइए दोस्त, कौन सा गीत सुनना है?
1: मुझे सुनना गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: बातें अधूरी है पर वक्त पूरा हो चला है। आपकी चाहतों का ये सिलसिला अब थमने को चला है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन के 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था प्रीतिका। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। शब बखैर, शुभ रात्रि।
1: साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में

0: तीस से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग का। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Vinimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said, "The platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security." And with that, we end this news bulletin.
4: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। इसी फ्रीक्वेंसी पर कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि, जय हिंद।